से मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 29 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट

0: की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन

भारतीय धर्म और संस्कृति में तपस्या को बहुत महत्व दिया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषिगण तपस्या तो करते ही थे, सभी ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति भी मनीषीगण तपस्या के द्वारा ही करते थे। यहां तक कि बल वैभव और श्रेष्ठ संतान तक की प्राप्ति के लिए भी हमारे पूर्वज तपस्यारत होते थे। तपस्या से सब कुछ पाना संभव था, लेकिन तप द्वारा अर्जित फल के नियम भी थे। भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि यदि तपस्वी में अपनी तपस्या को लेकर अहंकार हो जाए तो इससे अर्जित गुण निष्प्रभावी हो जाते थे। वस्तुतः अहंकार है ही ऐसा दुर्गुण जो मनुष्य के सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। रावण का उदाहरण सर्वविदित है। कठोर तपस्या के प्रभाव से उसने अमरत्व का वरदान पा लिया था और हेमनगरी लंका पर उसने इसी के बल पर

0: स्वाधिकार कर लिया था, लेकिन उसके अहंकार के कारण ही वो स्वयं और उसकी नगरी नष्ट हो गई थी। ये बात आज भी सच है। कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत, जो एक तरह की तपस्या ही है, से यदि कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है और उस पर अहंकार करता है तो उसका दुष्परिणाम भी पाता है। महाभारत में एक छोटी सी कथा के माध्यम से ये बात बड़े सुंदर तरीके से बताई गई है। ये कथा ये भी बताती है कि श्रेष्ठ मूल्यों के अर्जन के लिए सन्यासी बनकर केवल शारीरिक रूप से कठोर तपस्यारत होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने कार्यस्थली में ही तपस्या का श्रेष्ठ फल पा सकता है। जो लोग कहते हैं कि व्यवसाय करते हुए आदमी धर्म कर्म नहीं कर सकता, नैतिकता नहीं बरत सकता, उनके लिए भी ये कथा अच्छी सीख देती है। कथा है कि एक बार जाजली नामक साधक अपनी तपस्या में इतने लीन हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब एक चिड़िया ने उनकी जटाओं में अपना घोंसला बना लिया और उसमें अंडे भी दे दिए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ तब वे बिना हिले डुले और भी घोर तपस्या में लीन हो गए, ताकि चिड़िया के बच्चे कुशलतापूर्वक अंडे से बाहर निकल आए। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि उनकी जटाओं से चींची की आवाजें आ रही हैं, मतलब कि अंडे से बच्चे निकल आए हैं। बच्चों की माँ अवश्य ही उनके लिए भोजन लेने इधर उधर गई होगी। मेरे इधर उधर जाने से कहीं बच्चे माँ से बिछुड़ न जाए, इस भय से मुनि फिर तपस्या में लीन हो गए। इस बीच चिड़िया के बच्चे कुछ बड़े हो गए, अपने पंखों से उड़कर स्वयं अपना पेट भरकर वे पुनः ऋषि की जटाओं में स्थित घोंसले में आ जाते। फिर ये सोचकर जाजली उनके प्रति ममातुल हो उठे कि उनके इधर उधर जाने पर ये बच्चे कहां जाएंगे, और उन्होंने फिर तपस्यारत होने का विचार किया। विचार अच्छा था, एक पक्षी के प्रति जाजली का कोमल मन प्रणम्य था, लेकिन अचानक उनके मन में अहंकार घुस आया और उनके मुख से निकला, धर्मः प्राप्तो मया, अर्थात मैंने धर्म की प्राप्ति कर ली है। बस उसी क्षण आकाशवाणी हुई, जाजले तुम तो धर्म में काशी के तुलाधर वैश्य के समान भी प्रतिष्ठित नहीं हो। फिर भी वो अपने विषय में ऐसा नहीं सोचता जैसा तुम सोच रहे हो। ये सुनने के बाद कायदे से तो जाजली को स्वयं के अहंकार पर ग्लानी होनी थी और उस अज्ञात तुलाधर वैश्य के प्रति सम्मान होना था, लेकिन नहीं, यहां उनके अहंकार ने उनसे एक और भूल करवाई। ये सुनते ही वे अमर्ष से भर गए और उसी क्षण उस वैश्य से मिलने काशी की ओर रवाना हो गए। यहां तुलाधर का पता ढूंढने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जाजली को लगा मानो पूरा नगर तुलाधर का पता जानता है, सब उसकी ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे थे। फिर कुछ लोगों के झुंड के साथ वे तुलाधर की दुकान के सामने पहुंचे। आश्चर्य, उन्हें देखते ही तुलाधर ने उठकर न केवल उनके नाम से संबोधित करते हुए उनका स्वागत किया, बल्कि ये भी कहा कि मुनिवर ने कितनी भारी तपस्या की है कि चिड़िया ने उनकी जटाओं में घोंसला बनाकर निर्भयता पूर्वक अपनी वंश वृद्धि की है। फिर तुलाधर ने विनम्रता पूर्वक करबद्ध हो ये भी कहा, मुने मेरे संबंध में आकाशवाणी सुनकर आप व्यथित हुए हैं और अमर्ष से वशीभूत हो यहां आए हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रथम संबोधन से ही महर्षि समझ गए कि तुलाधर कोई सामान्य वैश्य नहीं है। जाजली का अमर्ष जाता रहा, लेकिन वनस्पतियों के व्यापारी इस वैश्य को आखिर ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त कैसे हुई, उन्होंने पूछ ही लिया। इस पर तुलाधर ने जो कहा उसे हम महाभारत के स्वर्णिम अक्षर कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे वचन अत्यंत श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, सुबह के 6:10 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

ईश्वरी के रायगढ़ केंद्र से भी अपन रहते भक्ति संगीत का कार्यक्रम 30 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि चर्चा, डॉक्टर ललित कुमार बिश्वाल।

0: जय जोहार संगवारी हो, मैं डॉक्टर ललित कुमार विश्वाल पशु चिकित्सा सहायक शल्य पशु चिकित्सालय लेलूंगा। मैं आप मल्ला एक नया तकनीक जो कि कृषि में तो उपयोग हो रही है लेकिन पशुपालन में हलो एक उपयोग चारा उत्पादन पर हम कर सकते हैं। एक नाम है हाइड्रोपोनिक तकनीक। हाइड्रोपोनिक तकनीक का में बिना माटी के प्रयोग के हम केवल पानी के उपयोग करके ट्रे में अनाज ला हम अनाज जैसे कि हमारे बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, मक्का है, ये मल्ला हम 8 से 9 दिन में हर 20 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते और इनमें प्रोटीन और जो पाचन योग्य ऊर्जा है ओकर मात्रा बहुत अधिक रहते। तो एक विषय में आप मल्ला बताहा जेकर बहुत संभावना है संगवारी हो, ये चारा ला हम बकरी मुर्गी हमार गाय मल्ला घलो और भैंस मल्ला सब सुअर मल्ला घलो हम खिला सकते हैं। एक बार हमला का चाहिए इनमें एक प्लास्टिक के ट्रे ले जेकर साइज 10 फीट बाई 3 फीट और 3 इंच ओहर गहरा रही। इसमें बाजरा गेहूं ज्वार मक्का एला हमन भिगा करके 12 घंटा तक भिगा करके एला हमन 24 घंटा भिगा के निकालने के बाद 24 घंटा हमन कोई पन्नी में बंद करके ओला रख दो तो उनमें छोटे छोटे अंकुरण हो गयी। अंकुरण आए के पश्चात हम जो ट्रे ऊपर में आप मतलब बताए उन्हें हमें फैलाना है एक बराबर मात्रा में और उन्हें हर 5 घंटा में 5 से 10 मिनट पर पानी के फुहारा डालना है। पानी के फुहारा यदि डालबो तो हर भीगी और हर 8 से 9 दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर चारा हो गयी और 1 किलो हर हमर 8 से 9 किलो चारा दही संवारी हो तो प्रति किलो चारा जो उत्पादन होगी अगर कीमत हमला बहुत सस्ता पड़ी 2 रुपया 1.5 रुपया के आसपास पड़ी और इसमें हम दाना के खपत ला 40% तक कम कर सकते हैं। तो यह बहुत फायदेमंद है। कम जगह में हम सीढ़ी नुमा सिस्टम के द्वारा भी एला हम उगा सकते हैं। इसमें यदि हमर करा मान लो 10 ठी जानवर है तो 10 जानवर एक ठे हर सुनवारी हो 30 से 32 किलो चारा देते तो एक ठे हर 2 गायला 1 दिन के वर्ष पर्याप्त चारा दी काबर की 15 से 16 किलो एक दुधारू गायला चारा चाहिए। यदि हमारे करा 10 ठी गाय है तो हमारा रोज 5 ठी ट्रे की जरूरत पड़ी। यदि हमारे करा 40 ठी ट्रे यदि रखबो और 5 ठी ट्रेला खाली छोड़ते हुए हर दिन एक ट्रेला भरत जाबो तो हमला 8वां दिन चारा उपलब्ध हो गयी और वही जोन ले हम चारा उगा हर फिर खाली हो गयी ओला यदि हम सुबह चारा लेबो तो शाम को फिर ओला भरना है। तो इस प्रकार से राउंडअप विधि द्वारा क्रमिक चक्र के माध्यम से हम पूरा महीना भर चारा ले सकते हैं। ये में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन रथे विटामिन रथे और एक पाचकता रथे 95% पाचकता रथे तो गर्मी के दिन भर ओहर बहुत लाभदायक हो सकते है संगवारी और एक का लाभ है। चारा के अभाव के स्थिति में हमें अच्छा चारा के विकल्प के रूप में हमें देखते हैं। कम जगह में कम समय में कम लागत में पौष्टिक चारा हमें मिल सकते है। चारा के लागत जो हम मान लो कोई 10 किलो दूध देते अगर पीछे हमें लगभग 100 से 150 रुपया तक के दाना जो लग जाते 40% अर्थात 60 से 70 रुपया तक हम कमी ला सकते हैं। ओकरे सेती और जानवर के प्रतिरोधक क्षमता क्योंकि विटामिन ए में बहुत मात्रा में रखे ओकरे बाद चारा के कमी ले हम एमें निजात पा सकते हैं। दूध हमारे संगवारी हो 0.5 लीटर तक खिलाड़े बढ़ सकते है और खनिज लवण की उपलब्धता लाए हर पूरा करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार संगवारी हो।
1: कृषि चर्चा भी अब सुन रहे थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 35 मिनट हुए हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात्रि 9:25 पर हम प्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पर्यावरण थीम पर विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही विविध भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा सुबह 9 बजे, दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज सुबह 8:30 पर हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए।

0: जय मास का भाग 47 सुनिएगा। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 6:40 पर देशगान का प्रसारण समय होगा सुबह 6:50। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:05 पर। आज सुबह 10:10 पर हम लेकर आएंगे सुगम संगीत। सुबह 10:30 का समय होगा फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। संध्या 5:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। चित्रपट संगीत सुनेगा संध्या 5:30 पर। फिल्म लीजिए फिर सुनने का प्रसारण होगा संध्या 6:20 पर। इसी कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे संध्या 7:00। आप सुन सकेंगे रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 8:30 पर। विविध संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर हम आपकी सेवा प्रस्तुत करेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज सुबह 5:35 पर सुनेगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। गांधी चर्चा आप सुन सकेंगे सुबह 7:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण होगा संध्या 5:00। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे संध्या 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा कृषि के साथ वॉयलर फार्मिंग अतिरिक्त आमदनी देती। इसके साथ ही चर्चा कृषि में उन्नत किस्मों का चयन भरपूर उत्पादन के आसार, ये चर्चा होगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
1: अरे गोपाल जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संडली।
6: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 40 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 47। कलाकार है मन्ना डे और शोभा जोशी।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जग चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। शरीर धारण किया तब मानस की वो मंगल में कथा सुनाई जिसे काक भुशुंडी ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का भाग 47 50 मिनट में है। आइए सुनते हैं समूह स्वर में देशगान। रचना है मनोहर पटेरिया की।

समोसर में देश का नाम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल एआई संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंच इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान एआई इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ. मनसुख मांडवीयाः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिन्दी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्, प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः, वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,2,48,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,00,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,00,741,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये 10वें संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी

0: इतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार 3री जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रायगढ़ के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर मोहन बख्शी के सुर में अभी आप फिल्म मोहन की गुड़िया का गीत सुन रहे थे। गीत लता मंगेशकर ने धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत पैरेलल।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें

न्यूज ऐप मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: आशा कुमार के सुर में अभी अपने फिल्म गीत लिखा था अंजाम दास, संगीत था कल्याण जाना जी का।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे, 35 मिनट हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

वालेकुम झरोखा सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके रेडियो मित्र सुशील का नमस्कार। श्रोताओं, आज के झरोखा के संग में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत देश के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह रकम 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर चौथे महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में जमा की जाती है। अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 23वीं किस्त कल यानी कि 20 जून 2026 को जारी की जाएगी। यह योजना भारत सरकार

100% वित्त पोषित योजना है और इसके लाभार्थी कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी किसान परिवार हैं। योजना का मकसद भारत के अन्नदाता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इस योजना के तहत दी जाने वाली रकम किसानों को सम्मान स्वरूप प्रदान की जाती है। भुगतान का माध्यम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT है। इस योजना का लाभ संस्थागत किसानों और संवैधानिक पदों पर आसीन या पूर्व किसानों को नहीं मिलता। योजना से जुड़ने के लिए और इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप PM किसान पोर्टल या PM किसान ऐप से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत या सहायता के लिए PM किसान के हेल्पलाइन नंबर 1552-6161 या 1800-115-526 पर संपर्क किया जा सकता है। किसान हेल्पलाइन का नंबर एक बार फिर से सुने, 1552-6161 या 1800-115-526। PM किसान निधि सम्मान योजना ने भारत के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार किया है। एक अनुमान के मुताबिक किसान परिवारों ने इस योजना के माध्यम से अपने कृषि को आधुनिक बनाने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए इस योजना का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में जानकारी के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो समर्पित है हमारे देश के मेहनतकश किसानों को।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। 45 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम की 11वीं कड़ी।

0: गांधी चर्चा में आज सुनिए स्वदेशी पर महात्मा गांधी के विचार।
1: स्वदेशी को आश्रम सार्वभौम धर्म मानता है। हर मनुष्य का पहला फर्ज अपने पड़ोसियों के प्रति है। इसमें परदेशी के प्रति द्वेष नहीं है और स्वदेशी के लिए पक्षपात नहीं है। शरीरधारी की सेवा करने की शक्ति की मर्यादा होती है। वह अपने पड़ोसियों के प्रति भी मुश्किल से अपना धर्म पूरा कर पाता है। अगर पड़ोसी के प्रति सब कोई अपना धर्म ठीक ठीक पाल सके तो दुनिया में मदद के अभाव में कोई भी दुखी ना हो। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य पड़ोसी की सेवा करके सारी दुनिया की सेवा करता है। असल में देखा जाए तो इस स्वदेशी धर्म में अपने पराये का भेद ही नहीं है। पड़ोसी के प्रति धर्म पालन करने का अर्थ है जगत के प्रति धर्म पालन। और किसी तरह से दुनिया की सेवा हो ही नहीं सकती।

जिसकी दृष्टि में सारा जगत ही कुटुंब है, उसमें अपनी जगह पर रहकर भी सबकी सेवा करने की शक्ति होनी चाहिए, और वह तो पड़ोसी की सेवा के जरिए ही हो सकती है। टॉल्स्टॉय तो इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि अभी तो हम एक दूसरे के कंधे पर चढ़े बैठे हैं, हम दूसरे के कंधे से उतर जाएं तो बस है। यह कथन उसी बात को दूसरी तरह पेश करता है। अपनी सेवा किए बिना कोई दूसरे की सेवा करता ही नहीं, और दूसरे की सेवा किए बिना जो अपनी ही सेवा करने के इरादे से कोई काम शुरू करता है, वह अपनी और संसार की हानि करता है। कारण स्पष्ट है, हम सभी जीव एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा ओतप्रोत हैं कि जो कुछ एक आदमी करता है उसका अच्छा बुरा असर सारे जगत पर पड़ता ही है। हमारी अति मर्यादित दृष्टि के कारण भले ही हम न देख सकें, भले ही एक व्यक्ति के काम का असर इस संसार सागर में नहीं के बराबर हो, मगर वह होता जरूर है। अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए इतना ज्ञान हमारे लिए काफी होना चाहिए। इसलिए शुद्ध स्वदेशी धर्म विदेशी के विरुद्ध नहीं है, फिर भी स्वदेशी सर्वदेशी नहीं है, इसलिए कि ऐसा होना असंभव है। सबका करने जाएं तो वह होता नहीं और अपना भी चला जाता है। अपना करते रहने में सबका होता ही रहता है। सबका करने का यही एक उपाय है, मेरे लिए सब बराबर हैं। यह कहने का अधिकार उसी को है जिसने पड़ोसी के प्रति अपना धर्म पाला हो। मेरे लिए सब बराबर हैं, यह कहकर जो पड़ोसी का तिरस्कार करता है और अपने शौक पूरे करता है, वह स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंद है, वह केवल अपने ही लिए जीता है। हम कुछ साधु पुरुषों को अपना स्थान छोड़कर सारी दुनिया का भ्रमण करते और परदेशियों की सेवा करते देखते हैं, वे बुरा करते हैं। यह स्वदेशी धर्म की दृष्टि से अपवाद है, सो बात नहीं। उनकी शक्ति उनके हाथ से ज्यादा सेवा कराती है। किसी मनुष्य के लिए उसके पास रहने वाला पड़ोसी ही होता है। दूसरे की मर्यादा अपने गांव तक होती है, तीसरे की अपने आसपास के 10 गांव तक जा सकती है। इस तरह सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार काम करेंगे। साधारण मनुष्य की पहुंच साधारण ही होती है। व्याख्या ऐसी ही रची जानी चाहिए जो साधारण मनुष्य पर लागू की जा सके। इस व्याख्या के भावार्थ में वे सब बातें समा सकती हैं जो उसके शब्दार्थ के विपरीत हों। साधारण मनुष्य यह नहीं मानता कि वह स्वदेशी का पालन करके किसी की सेवा करता है। अपने पड़ोसी के साथ वह व्यापार इसलिए करता है कि उसमें उसे सुविधा रहती है, यह मानना ठीक ही है, परंतु इस सुविधा में कभी कभी असुविधा भी देखी जाती है। जो स्वदेशी धर्म समझता है वह वैसे समय में भी उसका पालन करेगा। आजकल बहुतों को अपने देश में ही बनी हुई चीजों से संतोष नहीं होता, कई तरह के प्रलोभन दिखाई देते हैं, इसलिए बहुत लोग विदेशी चीजें लेने में अपनी सुविधा देखते हैं। ऐसे समय यह बताना पड़ता है कि स्वदेशी केवल सुविधा ही नहीं धर्म भी है। आज हिंदुस्तान में ऐसी ही स्थिति है, इसलिए यहां स्वदेशी धर्म जानने की जरूरत पैदा हुई है।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: गांधी चर्चा अभी हम सुन रहे थे। आज आपने सुना इसका 11वां भाग। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 7:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:25 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम उन्हें प्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पर्यावरण थीम पर विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही विविध भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा। सुबह 9 बजे, दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज सुबह 8:30 पर हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज सुबह 10:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सुगम संगीत। आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर। संध्या पर हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:30 पर।

लेकर आएंगे संध्या 6:20 पर। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे संध्या 7:00 सकेंगे रात्रि 8:20 पर। 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। आज रात्रि 10:00 आनंद लीजिए का विविध संगीत का, और रात्रि 10:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। रिमोट का प्रसारण होगा संध्या 5:00। चौपाल सुनेंगे संध्या 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा कृषि के साथ व्रत फार्मिंग अतिरिक्त आमदनी देती। इसका कृषि में उन्नत किस्मों का चयन, भरपूर उत्पादन का आसार, ये चर्चा होगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अब विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 MHz पर।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुनने को है कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का

0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम टीम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
3: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
5: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैंने इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
6: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा,

0: कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मुज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand.

इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, जब हम मनोरंजन के माध्यमों की बात करते हैं तो फिल्में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वो माध्यम है जिसने वर्षों से भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। हिंदी सिनेमा से लेकर प्रांतीय सिनेमा तक अनेक फिल्में बनी हैं। श्वेत श्याम से लेकर रंगीन फिल्मों के इस दौर में हमारे फिल्म उद्योग से जुड़े अनेक कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने फिल्म के लेखन, निर्देशन और निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और जब हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात करते हैं तो सन 60 के दशक में हमारे छत्तीसगढ़ में भी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ था, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का। और उस दौर में पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी कही देवे संदेश, और आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक जी को। नायक जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत

0: बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद इनवाइट करने के लिए।
0: नायक जी, आपके नाम को लेते ही समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ी की पहली फिल्म कही देवे संदेश की याद आती है।
1: जी,
0: आप चूंकि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, तो सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही।
1: रायपुर जिले का एक ग्राम है कुरवा बंगोली, यहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मेरे उसी गांव से मिली। उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर से हाई स्कूल का एजुकेशन।
0: उसके बाद आप ये फिल्म वाले क्षेत्र में कैसे आए, आपके मन में कौन सी बात आई?
1: मैं हमेशा देखता था कि हमारे गांव के लड़के जो हमारे साथ पढ़ रहे थे, उनके गार्जियन मिलने आते थे गांव से, किसान, तो उनके साथ वार्तालाप करते थे, तो गांव वाला तो छत्तीसगढ़ी में बात करता था लेकिन उनका लड़का जो है हिंदी में बात करता था, तो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता था कि अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करना। उसी तरह से छुआछूत के बारे में मेरा दोस्त था एक श्याम रतन करके, वो घर में आता है मिलने मेरे से और मेरे साथ बैठता था बाहर आंगन में, तो वो जब जाता था तो वहाँ मेरी माँ लिपवा देती थी गोबर से, तो इतने हेट्रेट था एक छुआछूत के बारे में जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में राष्ट्रीय विद्यालय स्कूल नामी राष्ट्रीय विद्यालय था, वहाँ सब देश के एक से एक नेता, बड़े बड़े नेता आके वहाँ भाषण देते थे, सब समानता की बात करते थे लेकिन हकीकत में वस्तु स्थिति अलग थी। ये सब चीज़ें मेरे अंदर में थी, तो शुरू से सोच लिया मैंने कि मैं फिल्म अगर बनाऊंगा, क्योंकि फिल्म में रुझान मेरा ऐसा हुआ, वार्षिक प्रोग्राम जो होता था स्कूल का उसमें रामानंद कनौजे करके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट लिख कर दिया।
0: कनौजे जी ने आपको सर्टिफिकेट लिख कर दिया, तो उसके बाद फिर ये जो पहली जो आपकी फिल्म थी कही देवे संदेश, इसकी कल्पना किस तरह से आपने की, और चूंकि इस फिल्म को आपने लिखा भी है तो इसके लेखन के वक्त कहानी कैसे सूझी आपको, क्या सोचा आपने कि किस कहानी पर फिल्म बनाई जाए?
1: मैं स्कूल के एजुकेशन के दिनों में रेलवे स्टेशन के पास नर्मदा कुंड है वहाँ रहता था, जो 2 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुँच सकते थे, तो रेलवे स्टेशन में व्हीलर का बुक स्टॉल था, वहाँ मुझे फ्री में सब पढ़ने को मिलता था। वहाँ देखा कि सिनेमा के मैगजीन बहुत तेरे बिकते हैं, तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा और मेरी भी इच्छा भी जागृत होने लगी कि मैं भी एक सिनेमा बनाऊँ, और अपने मन में ये बात रखी कि किसी को बोलूं तो हंसेगा ना।
0: तो आपके मन में सिनेमा बनाने की बात आई, तो इसके लिए कहीं से कुछ सीखा आपने या किसी फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कभी जोड़ने की कोशिश की ये फिल्म बनाने के पहले?
1: एक साहब थे, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है अभी, वो मुंबई आना जाना किया करते थे, उनका तो काम दूसरा था लेकिन आते जाते थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई रायपुर में रेलवे स्टेशन में, एवरी टाइम आते जाते थे, तो मैं भी उधर स्कूल आवर्स के बाद रेलवे स्टेशन में बिताता था मैं भी, तो उनसे जब दोस्ताना हो गई तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी मुंबई देखना है, तो उन्होंने बराबर अपना एड्रेस दिया और बोलना आप जब चाहे आ जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ नहीं हूँगा तो बम्बई में ही रहता हूँ, तो MNT स्टूडियो था उसके अंदर उसका क्वार्टर था, तो वहाँ गए तो देखा कि सिनेमा वाले हैं सब, मोहन स्टूडियो सामने था जहाँ हम रुके थे, तो वहाँ देवदास की शूटिंग चल रही थी, तो उसी में देवदास के यूनिट का एक मेंबर मेरे पास आया, तेरे को हिंदी आती है ना अच्छी, तो मैं कहा आती तो है, अब अच्छी है कि नहीं ये नहीं पता है, फिर उन्होंने कहा कि ये डायलॉग जो है ये आर्टिस्ट को रटाना है, मैं कहा ठीक है, तो वो दुलारी बाई थी उसको रटाना था, लेकिन वो मैं खुद पहले परेशान था कि इस माहौल में मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, फिर वो सफल नहीं हो पाई डायलॉग में रिटेक हो गया, तो फिर मुझे 2-4 गालियां दी और भगा दिया मुझे, तो इतने में क्या था कि आसिफ साहब का फिल्म मुगल आजम, उसका जो मटेरियल था सेटिंग का सब एग्जीबिशन के लिए था, वहाँ मैं लगा हुआ था, वहां पर मुझे 1 महीने के लिए काम मिल गया, तो इस तरह सिनेमा लाइन के अंदर मैं घुस गया समझ लीजिए।
0: तो इस तरह से आप सिनेमा लाइन में चले गए और उसके बाद में फिर ये फिल्म कही देवे संदेश की कल्पना आपके दिमाग में आई, 1965 में फिल्म आपने बनाई थी
1: जी,
0: तो फिर वहां से फिर आप वापस रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ आने के बाद फिर इस फिल्म की आपने प्लानिंग की?
1: यहाँ प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग तो

0: मुंबई में ही की,
1: वहीं किया आपने।
0: हाँ।
1: अच्छा,
0: यहाँ पर तो लोग फिल्म का नाम बोलो तो आपको जूता मारने के लिए तैयार होते थे लोग।
1: उस समय इस तरह की मानसिकता लोगों में नहीं थी कि फिल्म से जुड़ सके, तो फिर कहीं देवे संदेश के लिए आपने जब स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, इसकी कास्टिंग की, उसके बारे में कुछ बताइए। कास्टिंग के लिए कलाकार कहाँ मिले आपको?
0: क्योंकि जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, महेश कौल और मुखराम शर्मा के ऑफिस में
1: जी,
0: उस जमाने पर शीर्ष में उनका नाम था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उनका चहेता एम्प्लॉय था। कौल साहब से मिलना है तो मेरे से पहले मिल के जाता था, तो कौल साहब मुलाकात करते थे। वहाँ फिर मुखराम शर्मा जी के कापी राइटर की तरह भी काम करता था, स्क्रिप्ट लिखते थे वो, उनको फेयर करना, उसको टाइप करवाना, ये सब काम मिल गया मुझे। तो उससे मैं समझने लगा कि स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, और चूंकि शूटिंग में होता था कंपनी की, तो शूटिंग में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन कितने इम्पोर्टेंट है, क्या है वो सब। उसके बाद एडिटिंग होती थी, तो एडिटिंग में भी जाके देखा करता था कि ये लोग एडिट कैसे करते हैं, क्या है। इस तरह से नॉलेज जो है सिर्फ फिल्म मेकिंग का, और सबसे बड़ा उसमें बिजनेस का हाथ होता था। तो एनसीसीपी जो है उस समय हमारे जनरल मैनेजर थे, और वो फिल्म लाइन के एक्सपर्ट थे फिल्म मेकिंग में, बिजनेस में। तो उनसे मैंने सीखा बिजनेस कैसा होता है सिनेमा का, कैसे रिलीज करते हैं फिल्म, कैसे सेल होता है, ये सब नॉलेज मेरे अंदर में धीरे धीरे बलवती होती गई। और मैं ये सोचने लगा कि अब मैं फिल्म बना लूंगा। अब रही गई पैसे की बात, तो मैंने आगे देखा ना पीछे देखा, गाना रिकॉर्ड कर लिया रफी साहब का।
1: अच्छा, कौन सा गाना था वो?
0: झमकत नदिया बहनी लागे पर्वत मोर मितान हवे, मैं बेटा हाँ ये धरती के, धरती मोर पर आन हवे।
1: ये गाना तो बड़ा सुंदर बन पड़ा था।
0: हाँ हाँ, बहुत पसंद आया था लोगों को।
1: तो श्रोताओं को ये गाना सुना भी दें?
0: हाँ, बिल्कुल सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं आपकी फिल्म कई देवे संदेश का। हाँ। ये की

0: क्या बात है नायक जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में हमें सुनवाया और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। फिर ये गीत आपने रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद और कौन कौन से गीत रिकॉर्ड करवाया आपने?
1: तो उसके बाद पहली बात तो ये है कि मुझे मेरी कंपनी से नोटिस आ गया कि आप पागलपन कर रहे हो, पैसा कहाँ से ला के दोगे
0: जी,
1: कहीं से उधार लेके तुम गाना रिकॉर्ड किया होगे ऐसा वैसा। तो बोले कंपनी ने तय किया है कि जितना रिकॉर्डिंग का खर्चा है कंपनी देगी और तुम फिल्म मेकिंग छोड़ के कंपनी का काम करो, जो मुझे मंजूर नहीं था। तो फिर नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी और भटकने लगा, समझो 58, 59, 60।
0: उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था नायक साहब।
1: हाँ जी हाँ।
0: उसके बाद फिर आप भटकते भटकते कहाँ चले गए ये बताइए?
1: हाँ, भटकते भटकते घूम फिर के वहीं पहुंच जाता था जहाँ शुरू में जिनके वहाँ डेरा डाला था
0: जी।
1: फिर उन्होंने कहा कि कोई नौकरी पकड़ लो, तुम्हारा खर्चा कम से कम चले। फिर मैंने नौकरी वापस पकड़ ली कंपनी में।
0: फिर आप वापस नौकरी में आ गए, फिर ये कही देवे संदेश का क्या हुआ फिर?
1: फिर मैं काम करता रहा।
0: अच्छा,
1: कंपनी को बताए बगैर
0: काम करते रहे?
1: हाँ, गाना लिखवाना, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ शूटिंग करना
0: जी,
1: ये ऑफिस आवर्स के बाद में करने लगा।
0: तो कई देवे संदेश के गाने तो आपने हनुमंत नायडू जी से लिखवाए थे ना?
1: जी हाँ जी हाँ। हनुमंत नायडू साहब बहुत योग्य
0: जी
1: कवि थे, उनसे भी हमारी जान पहचान कुछ ऐसे समय हुआ कि उनको भी कुछ जरूरत थी, लोग उनको साथ दे।
0: और इसके संगीतकार कौन थे?
1: मलय चक्रवर्ती करके थे।
0: मलय चक्रवर्ती जी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, इनके बारे में हमारे श्रोता जानते नहीं है, कुछ बताइए कहाँ मिले ये आपको, कहाँ के थे?
1: मलय चक्रवर्ती साहब हमारी कंपनी के बाजू में दूसरा ऑफिस था
0: मुंबई में जी,
1: वहाँ उनकी फिल्म कर रहे थे तो उनका रिहर्सल वगैरह गाने का चलता था, तो हम मैं सुनता था, सुनाई देता था बाहर। तो वो लगता था कि कोई बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है जो गीत लिख रहा है। तो फिर मैंने उनको बुला लिया एक दिन, मैं छत्तीसगढ़ी में ऐसा बनाना चाहता हूँ अब, लेकिन मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, आप कुछ ज़्यादा डिमांड वमांड करोगे तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो आप गाना रिकॉर्ड करवा लो, पैसे की बात छोड़ दो। तो एक तरह से हामी हो गई उधर से।
0: और उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत लिखा है तो वो मूलतः छत्तीसगढ़ के थे ना नायडू जी?
1: दुर्ग के थे
0: जी।
1: तो वो किसी से मेरा एड्रेस लेके मुंबई आए थे
0: जी,
1: फिर लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन गए मेरे वो
0: जी।
1: उनसे जो भी लिखवाना होता था मैं फोन कर देता था और वो गीत का टेक्स्ट लेके आ जाते थे, फिर मलय चक्रवर्ती के पास पहुंच जाते थे और उनसे तुरंत के तुरंत ट्यून बना देते थे, वो उसमें मॉडिफिकेशन करना है वो कर लेते थे लेकिन काम तुरंत करते थे।
0: आपकी फिल्म कही देवे संदेश में मोहम्मद रफी जी ने भी गीत गाए थे और उस समय तो मोहम्मद रफी जी बड़े लोकप्रिय गायकों में एक थे।
1: हाँ जी।
0: भारत के नामचीन गायकों में एक थे
1: ये।
0: तो उनको जब आपने इस फिल्म के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में उन्हें पहली बार गाना है, तो रफी साहब का क्या रिएक्शन था?
1: रफी साहब रिहर्सल किए थे, एक दो रिहर्सल के बाद बोलने लगे कि ये गीत आप खुद क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेरे से क्यों करवा रहे हो, छत्तीसगढ़ी में आप गाओ और हो जाएगा। तो मैंने बताया कि फिर रिकॉर्ड कौन खरीदेगा,
0: अच्छा
1: आपका नाम है तो काम आसान हो जाता है।
0: जी जी जी।
1: कुछ बोला नहीं फिर उन्होंने और उन्होंने बहुत ही कम दाम में गाना रिकॉर्ड किया हमारे साथ।
0: इसमें मोहम्मद रफी जी का एक और हिट गीत था तोर पैरी के झनर झनर।
1: हाँ जी हाँ।
0: उस गाने के बारे में कुछ बताइए, उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जब रफी साहब आए।

0: तब उन्होंने किस तरह से लिरिक्स को देखा, समझा, आपसे कुछ समझने की भी कोशिश की होगी कि इन शब्दों का मतलब क्या है, आपने उनको बताया होगा।
1: हाँ, तो उसके बगैर तो होता ही नहीं ना
0: जी, क्योंकि मोहम्मद रफी जी तो बड़े सहज सरल इंसान थे।
1: हाँ जी,
0: और पंजाबी उनकी मूल भाषा थी, उसके बावजूद वो अन्य भाषाओं के गीत भी गा लेते थे समझकर पूरी तरह से। तो छत्तीसगढ़ी को किस तरह से आपने समझाया उनको?
1: वो उनका क्या था, आप उनको टेप रिकॉर्डर में टेप करके दे दीजिए, वो घर में बैठ के सुनते थे।
0: अच्छा,
1: ऐसे गीतों को जहाँ उनको जरूरत है, भले एक बार सुन रहे हो घर में या दो बार या रिकॉर्डिंग में आने से पहले सुन रहे हो, लेकिन वो उनका रूटीन था।
0: अच्छा, रफी साहब ने आपसे पूछा होगा ना भाई, इसमें हीरो कौन है, किसके ऊपर ये पिक्चराइज किया जाएगा, कुछ पूछा उन्होंने?
1: नहीं नहीं, ये सब ट्रेड में हमारा है नहीं ना, वो लोग अपना अपना काम।
0: तो जब ये इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई, रफी साहब से आपने दो गाने रिकॉर्ड करवाए थे ना?
1: हाँ।
0: कही देवे संदेश के लिए।
1: हाँ जी,
0: दो गाने थे। तो इन दोनों गानों की रिकॉर्डिंग के बाद में जब इसके गाने फिल्म में दिखाई देने लगे, और उसके बाद इसकी ईपी भी निकली थी कही देवे संदेश की, ईपी भी थी इसकी।
1: हाँ
0: जी, तो ये गाने जब छत्तीसगढ़ में बजने लगे, यहाँ के लोगों ने जब सुना तो किस तरह का रिएक्शन था?
1: गाने के बारे में रिएक्शन तो सब अच्छा था
0: जी,
1: लेकिन लोगों की शिकायत ये थी कि ये छत्तीसगढ़ी गाने नहीं लगते करके।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये गाने सुंदर हैं, ट्यून भी सुंदर है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं लगते, खाली आवाज छत्तीसगढ़ी हो नहीं, वो उसका कंटेंट भी छत्तीसगढ़ी लगना चाहिए।
0: और गायिका के तौर पर आपने किनको आमंत्रित किया था?
1: गायिका के तौर पर थी एक मीनू पुरुषोत्तम करके थी
0: जी,
1: जो बाद में अमेरिका चली गई, फिर आए नहीं लौट के वो।
0: उनसे कितने गाने गवाए थे आपने कही देवे?
1: उसने बिहनिया के ऊपर सूरज देवता एक ये रिकॉर्ड करवाया था, और एक ददरिया था जो मेन सिंगर था महेंद्र कपूर।
0: अच्छा, महेंद्र कपूर जी ने भी गाया था इसमें?
1: हाँ जी।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम
0: जी,
1: तो ददरिया रिकॉर्ड किया था इन दोनों का। इसमें यही था, दो दिन के दुनिया वो दो दिन के रूप, ढली जाए गोरी तो जवानी की धूप।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो इस तरह से था उसमें, लेकिन अभी तो याद नहीं है।
0: तो ये ददरिया सुना जाए?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो आइए सुनते हैं।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर ददरिया आपने सुनवाया। और श्रोताओं, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक। मनु नायक जी, कही देवे संदेश के गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और उसके बाद इसकी शूटिंग भी पूरी हो गई, और इस तरह से इसकी जो शूटिंग थी उसके लिए आपने लोकेशंस का जो सिलेक्शन किया था वो किस तरह से था?
1: लोकेशन का हमने चयन किया था, वहां तो शूटिंग हुई नहीं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जो लोग यहाँ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। हम वापस यूनिट लेके यहाँ आए तो कोई हमारे को रिसीव करने वाला नहीं था।
0: और ये जो नायक नायिका और बाकी जो अभिनेता अभिनेत्रियां थी, इनका सिलेक्शन किस तरह से किया था आपने?
1: वो चूंकि बताया ना कि स्टूडियो में रंजीत स्टूडियो सेंटर प्लेस था उस जमाने में
0: जी,
1: इसमें हरियाणवी छोटी छोटी फिल्में जो है, गंगा मैया तो पेरी चढ़ाई वो, इस तरह की फिल्में, नेपाली फिल्में, सब का उद्गम स्थान था रंजीत स्टूडियो, और वही हमारा ऑफिस था। तो वहां पर ज्यादातर लोग परिचित हो जाते थे, और उसके बाद कोई आर्टिस्ट आया वो मुलाकात भी होती थी उन फिल्मों में जो काम कर रहे थे। तो उसमें कान मोहन था सिंधी का,
0: कान मोहन जी
1: वो हीरो था, अबाना करके सिंधी फिल्म थी उसमें हीरो था
0: जी,
1: साधना हीरोइन थी। उसी तरह से सब आर्टिस्ट को सिनेमा में से देख के सेलेक्ट किया था।
0: नायक साहब, आपकी ये फिल्म जब कंप्लीट हो गई तब इसके रिलीज के लिए, मार्केटिंग के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आपने करवाई छत्तीसगढ़ के लिए?
1: हमने बड़ी कोशिश की लेकिन लोगों ने यहाँ कोऑपरेट ही नहीं किया। मुझे तो विलन समझते थे लोग, इन्होंने धर्म को बिगाड़ दिया है। तो ये ऐसे में यहाँ कहाँ बिजनेस हो सकता था। पिक्चर रिलीज किया और थोड़ा बहुत कलेक्शन भी आया, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस होना चाहिए वो था नहीं।
0: फिर 1965 में कही देवे संदेश के रिलीज के बाद फिर आपका अगला कदम क्या था?
1: अगला कदम इंतजार करना कि सबको पैसे उधार जो लिए हैं सबको छूटना।
0: अच्छा, तो इसमें कमाई आपको उतनी हुई थी कि नहीं कही देवे
1: संदेश? नहीं नहीं।
0: फिर कैसे, किस तरह से पेमेंट आपने सबका किया?
1: बिजनेस से किया।
0: अच्छा,
1: बिजनेस धीरे धीरे करके किया। गवर्नमेंट ने खरीदा था 72,000 एक साथ मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूरदर्शन ने दिखाया था तो, और भोपाल अनंत मलाल शास्त्री करके थे, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने खरीदी थी डिपार्टमेंट के लिए, फ्री में दिखाते हैं ना शो
0: जी,
1: उसके लिए एक पेटी खरीदी थी उन्होंने। कलकत्ता दूरदर्शन ने दिखाया था, उधर से पैसे आया बड़ी रकम, और बाकी बिजनेस से छोटा मोटा।
0: फिर कही देवे संदेश के बाद में आपका अगला सपना क्या था?
1: अगला सपना, मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी पठौनी करके, फिल्म का नाम भी रखा था
0: छत्तीसगढ़ी में,
1: छत्तीसगढ़ी में
0: जी,
1: लेकिन कुछ न कुछ ऐसे ही अड़चन फिर आने लग गई। लोग आज बात करके जाते थे, दूसरे दिन मुकर जाते थे।
0: नायक साहब, चूंकि शुरू से ही आप हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे हैं और हिंदी फिल्मों से जुड़े रहते हुए आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश का निर्माण किया, और उसके बाद फिर हिंदी फिल्मों का आपका जो सफर है वो जारी रहा, तो उसके बाद की जो हिंदी फिल्में रही हैं उनमें से कोई एक ऐसी फिल्म आप जिक्र करेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो आपको याद हो, कोई नाम बताना चाहेंगे आप?
1: जिंदा दिल।
0: उसमें ऋषि कपूर जी से आपकी जब मुलाकात हुई होगी तो उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे लगे वो आपको?
1: ऋषि कपूर बहुत अच्छा थे, नायक अंकल करके बोला करते थे मुझे।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि उनके पिताजी की फिल्म थी दीवाना
0: जी,
1: दीवाना हमारी कंपनी ने बनाया था, तो कौल साहब की, तो उस समय राज कपूर जी से भी मुलाकात शूटिंग में होती थी।
0: हाँ।
1: तो उस हिसाब से दिवाली मिठाई उठाई लेके लेना देना ये सब चलता था। तो उस समय छोटा था ऋषि कपूर, नायक अंकल बोला करता था मुझे।
0: अच्छा, ये

0: जिंदा दिल के पहले आपने देवान कपूर जी की एक फिल्म की थी आज की धारा। आज की धारा के बारे में कुछ याद है आपको?
1: नहीं, याद नहीं आ रहा है।
0: और एक फिल्म थी बिन बाप का बेटा।
1: हाँ, बिन बाप का बेटा भी रह गई।
0: अच्छा, ये बाबा साहेब सारंग जी की ये फिल्म थी।
1: हाँ हाँ।
0: ये फिल्म बाद में फ्लोर पे नहीं आई क्या?
1: नहीं आई।
0: अच्छा, एक कस्तूरी फिल्म भी आपने की थी जिसको कि नेशनल अवार्ड मिला हुआ था।
1: हाँ।
0: ये बिमल दत्त जी की फिल्म।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इसके बारे में कुछ याद है आपको?
1: याद है।
0: बताइए, कस्तूरी में कौन थे? कस्तूरी
1: में आगा साहब थे
0: जी,
1: मिथुन चक्रवर्ती।
0: अच्छा, आपने एक सिंधी फिल्म भी की थी।
1: हाँ।
0: सिंधी में वो फिल्म कैसी थी, बताएंगे कुछ उसके बारे में?
1: सिंधी फिल्म बहुत अच्छी थी। मदन जुमानी करके थे।
0: अच्छा,
1: जो डायरेक्टर थे उसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर थे। खुद उन्होंने रोल किया था और सतराम रोहरा ने बनाई थी
0: जी,
1: जो हमारे अच्छे मित्र थे।
0: और एक जीते हैं शान से।
1: हाँ।
0: इस फिल्म में भी आपने अपना योगदान दिया था। पी सुब्बा राव जी की फिल्म थी जीते हैं शान से।
1: हाँ हाँ।
0: तो नायक साहब, इस तरह से हिंदी फिल्मों का भी आपका एक लंबा सफर रहा है
1: जी।
0: अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके परिवार में अभी कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरी पत्नी तो रही नहीं, और मेरा दो पुत्र हैं, दोनों कामकाज में लगे हुए हैं, इंजीनियर हैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक, और मेरे भाई का परिवार है।
0: तो अभी आप रहते कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में हैं या फिर महाराष्ट्र में?
1: महाराष्ट्र में।
0: मुंबई में रहते हैं?
1: मुंबई में।
0: अच्छा,
1: और आप लड़के दोनों वहीं रहते हैं ना?
0: आपके साथ में ही है।
1: हाँ।
0: जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके फिल्मों के दौर की जो सुनहरी यादें हैं, उन यादों के साथ इस वक्त आपके जीवन का ये जो समय है, उन यादों के संग बीत रहा है। और अभी आपकी उम्र कितनी होगी, हमारे श्रोताओं के जानकारी के लिए बताएंगे आप?
1: 1937 का है।
0: 1937 का आपका जन्म है। तो इस तरह से आप 88 साल के आसपास के हैं।
1: हाँ जी
0: जी जी। तो मनु नायक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप स्वस्थ रहें और अपने फिल्मों के योगदान के उस दौर में, जिन फिल्मों का आपने निर्माण किया, निर्देशन किया, लिखा, और जिन फिल्मों के प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर आपने फिल्मों में अपना योगदान दिया, उनकी यादें सदैव आपके मानस पटल पर जिंदा रहें और आप यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इनसे मिलिए कि इस अंग से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। सुबह 9 बजे हैं कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

बोल बच्चन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटाली दे लूसियो की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर सुन रहे हैं चित्रलोक।

हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभू वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संगीत। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और वक्त है एक अंतराल का।

0: अग्निपथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: कॉकटेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। भाई खुशियों के जो छोटे छोटे पल हमें मिलते हैं उन्हें ही चुनिए, यकीन मानिए इन्हीं से रोशन होती है हमारी दुनिया।
1: जुगनू बन के तू जगमगा जहां।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और दिन भर जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ। अब आज के लिए दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आप

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी
1: का जानू मैं सजनिया का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: तुझे सलाम मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे
2: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
2: यू आर इन लव,
1: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहादेर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

टंकराम वर्मा ने सभी महाविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं और परिणाम समय पर जारी किए जाएंगे। छात्र छात्राओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। मंत्री ने विद्यार्थियों से समय पर प्रवेश लेने और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाई शुरू करने की अपील की है। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए इसे युवा शक्ति की सफलता

बताया है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 किए जाने का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस हॉस्टल में विद्यार्थियों को निशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी आयुक्त ने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के 3 अलग अलग मामलों में आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के आबकारी उप निरीक्षक हरीश पटेल, भानुप्रतापपुर के ओम प्रकाश और अंबिकापुर के आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता को निलंबित किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ाई। नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है और संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:25 में पर हम प्रसारित करेंगे होने पर थीम पर विशेष कार्यक्रम। विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। सुबह हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे। सुबह 10:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या 5:30 पर। इसका 5:20 पर और इसी कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम भाग का प्रसारण होगा संध्या 7 बजे। गैर फिल्मी गीतों के प्रसारण का रात्रि 8:30 पर, 10 बजे और आज रात्रि 10:30 पर हम आपके सेवा में प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम। चौपाल सुनेंगे संध्या पर। आज की बात का विषय होगा कृषि के साथ ब्रॉयलर फार्मिंग अतिरिक्त आमदनी देती। चर्चा उन्नत किस्मों का चयन भरपूर उत्पादन का आसार सुन रहे थे। ये केंद्र है 107 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150

0: वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 सात नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदु भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopalchandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram Geet Desh Mallar Dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रतिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ

0: संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। 22 की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
2: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा।
2: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
4: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये केंद्र है। 10 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्द कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनते हैं अनुराग शर्मा के स्वर में ये नज़्म।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुबह 30 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

लगी तुमने लिया है फिल्म असली नकली से। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं, से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, इंदिरा नगर राजो सहित शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा, चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्या,

0: किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में अब अमर अकबर एंथोनी का गीत सुना। रचना थी अमन बख्शी की, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से समय आप सुन रहे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह!
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिए श्रोता साथियों की पसंद पर। भाटापुरा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड बंदरा नगर इंदौर से हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी। ताजपुरा से हैं भाई कारी, रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। जयंत कुमार पैरागी। ग्राम रूबाबाधा शनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। आइए तो पसंद को सुनते फिल्म दामिनी का ये गीत।

कुमार सानू और साथ नसीर गम के सुर में भी अपनी फिल्म दामिनी का गीत सुना संगीत है नदीम श्रवण का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फिल्म बेताब का गीत। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रवीणा मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। जतुगा किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। गांधी चौक रोड पर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। श्री सरिंगी सी महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन।

आगे सुना, नहीं तुरंत आ गया था राहुल देव बर्मन ने। श्रोता, यदि कार्यक्रम आपकी आप भी अपना पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें।

ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश में बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिए अपने रेडियो मित्र सुशील को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में. मैं हूं विधि जैन. पहली नज्म हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में. गालिब के बोल और फैयाज शौकत ने इसे संगीतबद्ध किया है.

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और

0: झुंड वहाँ पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिज्वी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथ।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज़ इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार हैं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गज़ल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियत नीलानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचाने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। वन विभाग ने गुरुवार को भारतीय वन सेवा IFS के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के तहत मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक स्तर के 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

0: राजहरा रावघाट रेल परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 17 जून को रावघाट रेल खंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। इस दौरान 58 रेक का उपयोग किया गया। करीब 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के बाद सुरक्षा स्वीकृति मिलने पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो सकेगी। इससे बस्तर क्षेत्र में आवागमन, रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस, अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया।

0: कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं

0: इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में। हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।
3: प्यार का

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है। तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अप...

अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफ़र में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो हैं वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिखती है। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं, हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रुमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायमी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, सब किसी एक को पसंद करना कठिन है। और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों शायरों के सामने चुनौती आने लगी, कोई एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे भी हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें, भावनाएं रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं, उस गीत में पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा और उसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार। ये कौन चित्रकार है? ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीतकार भरत व्यास ने इसे लिखा है और सतीश भाटिया ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये खूबसूरत सी नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियां कौन सी हैं। तुम्हारे श्रोता लिखता है, ध्वजा से हैं खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के। आहा, कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन आती है जी, बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेर दार घेर दार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, गाली चाहिए गुलाब की, बगीचे ये बहार की, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है जी। बिल्कुल, कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार हैं जी। ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है जो सबको पसंद आ रही है। हमारे श्रोताओं ने, अच्छा आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है जी। बिल्कुल, हमें भी, हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है जी। बिल्कुल, हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गीतकार का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या कहते हैं कि गीतकार अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं।

लिखनी से मोती टपकते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। कितना खूबसूरत गीत हमने सुना है। अब इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनके प्रिय गीतकार जो हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। मिर्जा गालिब अगर जिंदा होते तो साहिर की शायरी सुनकर वाह वाह कह उठते, ऐसा उनका कहना है। और चोट खाया प्रेमी हो, सभी तरह के गीत लिखे उन्होंने, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सिर्फ तीन शब्दों में लंबी बात है और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है, गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं। वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं। हमारी खुशियां, आंसू, यादें, सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप ज़रूर पहुँचाइए अपनी अनुभूतियाँ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि व्याकरण शब्दावली ही नहीं, रचयिता के व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूतियाँ, भावनाओं, जीवन का सार होता है। गीतकार जिंदगी लिखा करते हैं, शब्द नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। इन्हीं गीतकारों को याद करते हुए अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं वो साहिर लुधियानवी की कलम से है। और आपको साहिर लुधियानवी का कोई शेर, कोई कविता, कोई बोल इस गीत से हो या ना हो चलेगा। कोई भी शेर अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। तब तक सुनिए ये बहुत प्यारा सा गीत जो कि लिया है कभी कभी फिल्म से। बस इसके गायक का नाम बता दीजिएगा और बताइए साहिर लुधियानवी की कोई शेर, शायरी या कोई कविता।

हूँ। फिल्म कभी कभी से यह गीत हम सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत और गाया मुकेश ने। और यही प्रश्न तो हमने आपसे पूछा था और इसके साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था। हमने कहा था कि साहिल लुधियानवी की कौन सी पंक्ति है जो आपके दिल को छूती है। कभी कहीं और पढ़ी होगी आपने तो आपने लिखकर भेजी है कि अपनी तबीयतों का कोई गम नहीं मुझे, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। आह क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मशरूफ जमाना क्यों वक्त अपना बर्बाद करिए, दिल लाइन दिल को छू जाती। जी बिल्कुल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जी कल और आएंगे नगमाए खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये लाइन हमारे श्रोताओं को पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को और नौजवान दिल उस समय शायरी सुनकर धड़क गया था। सही बातें होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया,

0: बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है। वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। सही यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता बल्कि जज्बात, उसकी धड़कने, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगी और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ उनके लिखे हुए कुछ नगमे कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया है कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
4: मैंने

हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहाँ से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बकिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियाँ बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं, मुकेश ने गाया, सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकंदा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे

श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड्स, 22 फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहाँ तक पहुँचाना, विश्व स्तर तक पहुँचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफ़र सुहाना कहाँ होगा। योगेश जी, माया, गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, और पूरी हीर राजा पद्य वद्य करने वाले कैफी आजमी जी, सच बात है कितना, कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सके। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से। और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है और इस गीत को आपको सुनना है और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है, है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है, और इनका लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये गीतकार गोपालदास नीरज है, तो गोपालदास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार हैं, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियां आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज में को मेरे पापा को सबसे के सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियानी की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपाल दास नीरज, मम्मी वहाँ पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी और इतनी ज़बरदस्त फैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं, परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको

ये आवाज़ मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने के एल सहगल के ज़माने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एस डी वर्मन, ओ पी नैयर से होते हुए आर डी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखने के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल हमारी गौशोता ने लिखा है कि वो नीरज गोपालदास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो उस पर 4 बजे तक बैठा रहा नीरज, लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरू, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरू के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवाब आगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया। लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार, बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया, बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डी एन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतसिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैनी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम, पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि, कुमार बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है। परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है. जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं. कभी और किसी दिन सुनाएंगे, पर आज का, आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है. आइए सुनते हैं इस गीत को. आज्ञा दीजिए, शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हों तो बहुत सारी बधाई. आपका जीवन मंगलमय हो.

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी

आरिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की यह पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंह नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम, जय जय वंदे मातरम।

0: चलो सिंहस्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जयगान कर रही है।

इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़ कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।

0: साल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बरिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
0: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
1: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
0: द बंगाली, इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
1: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
0: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
1: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
0: हितवार्ता ने लिखा,
1: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
0: मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
1: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा।

0: मुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविंद्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया। पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला था।

वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी। अब संविधाएं भी पढ़ने लगी।

0: कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरद हस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुलर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम,

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस स्लोवाकिया की 5 दिन

0: ये सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज

दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी

0: 13 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि

0: सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178289802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री C. Joseph विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज़ है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत ऐसे चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन

0: किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से गीता दत्त की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही
0: हूँ। शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, बिजली के पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधार से भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12 साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो भी सुन लेते हैं, टीवी भी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा
1: जी, नीता, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदा बांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदा बांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उमस बहुत हो जाती है।
1: बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती है, मेरी सहेली है,
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं। बाकी आप उपन्यास बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं, जिसमें हमें
1: पढ़ना बहुत... मतलब लगभग तो सभी कुछ छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब बचपन में हम थे तो कॉमिक्स का जमाना था और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है आपको? आज के जमाने के जो आज के दौर के गीत हैं वो पसंद करती हैं?
1: आजकल के भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खासतौर से लता जी से।
0: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
1: बहुत सारे हैं।
0: आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं वो बताइए।
1: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंग हिना, हिना फिल्म का गाना।
0: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोराट।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए हैं अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो तो सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तब भी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारिक।
0: मधुर पारिक, मधुर पारिक, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर, राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहां जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर हैं?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल छोड़, उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा दिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह की सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधरी रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शाहजहान के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात

0: कर रही हैं?
1: जी, मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं टीचर थी, लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: जी, अभी हाँ छोड़ा है मैंने। अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी, 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं, वैसे तो जरूरत नहीं। उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं। फिर अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है, तो बच्चों में जो संस्कार पढ़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी, अभी स्टार्ट किया है। हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है, तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं, तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक खैरवार बात कर रही
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से
1: हूँ।
0: कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही पे है पथरिया, तो वहीं पे पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और साथ में जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं मुझे तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना, और मतलब सॉन्ग को गाना। मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाणे है।
0: प्रतिभा रहाणे जी, आप कहाँ रहती हैं, किस

0: शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योगाश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलंटियर जाती हैं?
1: हाँ।
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ, वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत?

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687088, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुँच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध से बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़

उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

फिर तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबरा कर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन के चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप ना तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए। और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही है। वो अपने किए से मुक्त नहीं।

नहीं हो सकते, बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है। मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहाँ जाना हो चली जाऊँ, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूँ।

अम्मा ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर

0: पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?
1: हाँ जी।

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बात

मैं अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया।

बकवास कर रही हो? तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीख ही तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज़ को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेटकर

रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी आप सुने थे विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5 बजे हाँ ये आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पिंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये नवाडी, टुकुडाण, पेंडारी, बूढ़ाडाण, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, बोड़ाझरिया, ढोढ़ा गांव, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ा घाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 104 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, ससकोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के किंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
2: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
3: अभी आप सुन प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट FM 107.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ देर पश्चात यानी शाम 5:10 पर आप सुनिएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रोजगार मेला के आयोजन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मनोप्रसारित करेंगे कार्यक्रम की समाप्ति तक। हिंदी दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6 बजे से शाम 6:10 पर। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर। आज शाम 7 बजे से आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण सुनेंगे आज शाम 7:20 पर जिसमें आज की बात का विषय होगा आमदनी देती। साथ ही सुनेंगे आज का मौसम आज का टी प्रेशर प्लस मंच और आज का मंडी भाव 8:20 पर 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पर विशेष कार्यक्रम सुनेगा आज रात्रि 9:25 पर 8 बजे से। फिर कार्यक्रम बजरी गंथा में आपके लिए कराएंगे आज रात्रि 10:00 पर। तो ये थी जानकारी आज के साधिकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
4: साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
3: प्रतीक्षा कीजिए।
10: In the quarterfinals, and that is the end of this news bulletin.
11: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
12: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
13: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
12: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
13: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज़ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ, एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
12: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
13: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
12: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं पहले ही हो चुके और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी कितने युवा उससे लाभान्वित हो और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
13: पीपल विल फील सिक्योर ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग बट Let the, this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar, साथ है भारत सरकार
12: जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार

0: योजना सृजन, रोजगार के औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके। और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है। जी
1: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज support for the first time employees jinko pehli baar naukri mili
0: hai
1: this component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time and the eligibility is new employees joining an EPFO that is the employees provident fund organization registered establishment with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh and the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer DBT through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल, सभी को फायदा है।
1: yes.
0: बिल्कुल फायदा है। और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is the National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service NCS is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं। और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 साल.
1: Yeah. And then

0: इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care, this is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes, yes, yes, yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got their employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
1: yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए. yes. तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, दैट इज व्हाट इट सेज. नो the scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce, and then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत, और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच, और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा.
1: yes,
0: ये बहुत
1: yes.
0: जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: चार श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020.

0: 20 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, the money will go to 15 lakh people into their accounts. And they'll be getting their letters and it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. Mm-hmm. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी capacity है, पूरी भरी हुई है.
1: Yes, it's full. Not a single seat is empty. People are... They're all job seekers and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they've got their letter.
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees and the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold provided they are retained for at least 6 months and the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors however to heavily support the manufacturing sector Businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number UAN utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुन्नानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके ही इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ

0: और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं,
1: yeah, I think everything has stopped. They are all in attention and I think the Prime Minister is arriving with other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन।
1: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
1: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
0: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
0: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
1: And now the welcome remarks
2: जोरदार तालियां हो जाएं।
1: by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give his speech.
4: प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में

0: आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं, जिसको जॉब चाहिए और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2,00,000 करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1,00,000 करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1,00,000 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15,00,000 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money and the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
8: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
5: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल,
9: और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी

देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए

उपस्थित हैं, आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपना

0: सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदी हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: अभी आप सुने तो भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में रोजगार मेला के आयोजन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 6:40 से आप सुनिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए, हम आपको आज सुनवाएंगे इस कार्यक्रम का पहले और दूसरे भाग का प्रसारण आज रात्रि 10 बजे से। किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण सुनेगा आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा कृषि के साथ ब्रायलर फार्मिंग अतिरिक्त आमदनी देती। साथ ही सुनिए क्रम आज का मौसम, आज का टीप, कृषक पसमंच और आज का मंडी भाव। हमारे केंद्र से सुनिएगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पर्यावरण थीम पर विशेष कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज रात्रि 9:25 पर। आज रात्रि 10 बजे से सुनिएगा आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले और दूसरे भाग का प्रसारण। इस कार्यक्रम के पश्चात सुनेगा फिल्मी गीतों कार्यक्रम रजनीगंधा। तो ये थी जानकारी आज के सांध्यकरण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म परिणीता का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आपको याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले और दूसरे भाग का प्रसारण। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह 11 बजे मन की बात।
2: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून

0: के प्रवेश की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नियद निल्लानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, आवास और रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण किया जाएगा। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुंगेली में वरिष्ठ नागरिकों से सौजन्य भेंट की। इस दौरान श्री साहू ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी तथा उनसे संवाद किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पंजीकरण और जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान योग के संवर्धन तथा प्रदेश में योग संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर ले। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इधर नीट UG के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। महाराष्ट्र के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 20 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 10 हाईवा को जब्त किया है। उधर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने मिंगाचल नदी में बीती देर रात छापा मारकर रेत उत्खनन कर रहे JCB, पोकलेन मशीन और 4 वाहनों को पकड़ा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। उधर रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के चिरई पानी में कल रात दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती शाम आए तेज आंधी तूफान और बारिश के दौरान 2 उद्योगों के बीच बनी एक दीवार अचानक गिर गई, जिससे पास ही झोपड़ी बनाकर रह रहे कुछ मजदूर उसकी चपेट में आ गए। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 जुलाई तक चलेगी। चयनित बच्चों को राज्य के निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से हज यात्रा के लिए सऊदी अरब गए 122 हज यात्रियों का पहला जत्था नागपुर पहुँच गया है। नई दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। और बालोद पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 टैंकर, मोबाइल फोन, खाली गैलन और 40,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक

अभी आप सुनते प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धन दौलत का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। राहुल देव बर्मन का लिखा के संगीत से सजा ये गीत मजरू का लिखा हुआ है।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com। सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: कार्यक्रम में अब आपको सुनाते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म देहभान का ये गीत। बोल संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आरिफिन का गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में। समीर के लिखे बोलते संगीत आनंद मेरी कथा। इस कार्यक्रम के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता आपको याद दिला दें, आज फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनने के पहले और दूसरे भाग का प्रसारण सुनेगा आज रात्रि 10 बजे से FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाई का कार्यक्रम

चौपाल के बटकी में सबो संगी संगवारी धाई बहनी मल्ला बंशी के राम राम भैया हो। आज है शुक्रवार आओ यहर जून के महीना है। आज बहुत सारा चर्चा करे बर है, गीत गोविंद घला सुने बर है और सबले बड़खा आज हमर लोकगीत होते हुला सुने बर है भैया हो हरी खाद उपयोगिता खेत बचाओ अभियान अकरो चर्चा करबो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 23वां किस्त हस्तांतरण काल ले होही ओकरो चर्चा करबो। आज के जो विषय है हमर जो चर्चा करे के है कृषि के साथ बायलर फार्मिंग अतिरिक्त आमदनी देती, कृषि में उन्नत किस्मों का चयन भरपूर उत्पादन का आसार, खरीफ में अरहर की खेती लाभदायक, सुंदर काया स्वस्थ विचार योग से महके घर परिवार एक और चर्चा करबो। कदन फसलों की खेती सेहत के साथ आमदनी देती, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, संघर्ष में लैंगिक हिंसा समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 23वां किस्त हस्तांतरण एक भी चर्चा करबो। संदेश होही गीत गोविंद के संग होही आज की किसान। तो भैया हो कृषि के साथ बायलर फार्मिंग अतिरिक्त आमदनी देती होकर पहली मौसम हर का है देखा तो अब खरीफ सीजन चालू हो गए हैं। भले ही अभी मानसून आइस नहीं है लेकिन बादर करत है तो हो सकत है 2-4 दिन में पानी गिरे, माने कि पानी गिरीस तो काम बूता भरदरा जाही और जैसे पानी गिरीस तो किसान संगवारी मल्ला समय नहीं मिले बूता काम हर उतका भरदरा जाही। तो समय के हिसाब ले मौसम के हिसाब ले हम अपन सेहत के प्रति भी गंभीरता से ध्यान देना है। लोग लड़का मन के पढ़ाई चालू हो गए है, स्कूल खुल गए है लेकिन मौसम हर गर्मी भी है उमस भी है तो ओला उमन ला बचाना भी है, उमन के सेहत के प्रति गंभीरता से हम ध्यान भी देना है। कृषि के साथ बायलर फार्मिंग अतिरिक्त आमदनी देती भैया हो, खेती किसानी के बुतार हमार परम्परागत है और जो हिसाब ले नवा नवा तकनीकी आत है, नवा नवा चीज आत है ओकर जरूरत हमन ला पड़त है, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे खेती किसानी में हो, चाहे आने काम बूता में हो। तो एकर बार हमन ला भैया हो हमर करा जो आय के साधन रहते और सीमित रहते खेती किसानी के बूता है तो हमन ला आय के अपन साधन ला बढ़ाना है ओकर बार हमन बायलर फार्मिंग कर सकत हन यानी मुर्गी फार्म पोल्ट्री फार्म जोन लगत हन। तो खेती किसानी के बूता के संग में वो बूता ला हमन अच्छा से कर सकत हन

थे। कृषि में उन्नत किस्मों का चयन भरपूर उत्पादन का आसार भैया, खरीफ सीजन चालू हो गए है और खेती किसानी के बूता जो होते वह बीज के ऊपर होते, यानी अच्छा बीज है तो हमन ला अच्छा फसल मिलही, अच्छा उत्पादन मिलही, गुणवत्ता युक्त ओकर हमन ला फल मिलही। तो जो उन्नत किस्म रथे ओकर चयन करना हमन ला जरूरी रथे, काबर कोई भी बीज ला बो देबो तो हो सकत है ओकर उत्पादन ही नहीं होए, उपज ही नहीं होए, अच्छा से पैदावार ही नहीं होए, तो ओकर ले हमला नुकसान हो सकत है। तो एकर बार हमन ला का करना है, सबसे पहली उन्नत किस्म के बीज के चयन करना है, जानकारी लेना है। हमार कृषि विभाग के अधिकारी मन आजकल घूमत रहते हैं, खेत खेत में भी घूमते हैं, अब मोबाइल के जमाना है तो सब कर हमन पूछ के जानकारी ले सकत हन कि भाई इसने इसने हमार करा वो है खेत है, इसने मिट्टी है, तो का किस्म के बीज के चयन करना है। तो कर ले का होही कि भाई ओमन जोन हिसाब ले बताही तो ओहर 16 आना उत्पादन हमन ला दही। कोई भी काम हमन करथन तो नुकसान होए करके नहीं करन, फायदा होही कहके ही करथन। तो फायदा कब होही, जब हमन यदि खेती किसानी के करबो तो बीज हर अच्छा होही, और जब बीज हर अच्छा होते तो गुणवत्ता अच्छा मिलते, उत्पादन अच्छा होते। ओकर बर भैया हो किस्म के चयन जो उन्नत किस्म के रहते उसने चयन ला हमन ला करना जरूरी है। एकर बर हमन ला जानकारी कृषि विभाग के मन देते हैं, वो मन बता देते हैं कि भाई ये बीज के ज़्यादा अच्छा मांग भी है, यह अच्छा उत्पादन भी है और गुणवत्ता युक्त है। तो एकर ले का होही कि हमन ला अच्छा उत्पादन मिली, और जितका ज़्यादा अच्छा उत्पादन होही उतका हमन ला ज़्यादा आमदनी होही। खरीफ में अरहर की खेती लाभदायक भैया हो, राहर दाल खाना खाथन तो दाल जरूरी होते, चाहे कुछ प्रकार के दाल होए, दाल हर प्रोटीन के सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते। प्रोटीन के मात्रा जो हमन के शरीर में जरूरत रहते ओला पूरा करे के दाल हर होते। तो कुल मिला के दाल हमन खाबेज करथन, दाल खाए बर का होते कि या तो राहड़ दाल खाथन या और कुछ कुछ दाल खाथन, दाल कई प्रकार के रहते, लेकिन रहर दाल जो होते अरहर जो होते यहर एक तरह से हमन ला आसानी से भी मिल जाते। गांव घर में का होते कि खरीफ सीजन होए चाहे रबी सीजन होए, रबी सीजन में ज़्यादातर टिकरा में लगा देते हैं और खरीफ सीजन में जो खेत के मेड़ रहते वो में लगा देते हैं। तो खेत तो बहुत सारा रहते और एक खेत में मोटा मोटी जो किसान मन के एक मापदंड रहते ओकर हिसाब ले देखबो तो दो साइड के मेड़ हर ओ मन के रहते, एक खेत के दो साइड के मेड़ हर किसान के रहते और दूठी मेड़ हर आने किसान के रहते, चारों तरफ ले घेरा रहते वह चारों तरफ मेड़ रहते ओकर। तो जैसे दूठी मेड़ है हमार या तीन ठी मेड़ है जोन भी है, वो मेड़ में हमन बढ़िया कतार ले अरहर के बोनी कर देबो। सब किसान संगवारी मन लगाते हैं, ऐसे नहीं है कि नावा बाते हर सबो जन करते हैं, बड़खा पार जो रथे बड़खा मेड़ जो रथे वो में बढ़िया बनते और मान लो नांगरों में जो तथनी बनते तो हूले हमन राफा में या कुदारी में गड्ढा करके भी ओला लगा सकत हन, तो आसानी से लग जाही और वो में कोई बूता काम करे के जरूरत नहीं रहे, राखड़ खातू छींचे गला जरूरत नहीं रहे, बढ़िया ले अरहर हो जाते, मने कम लागत में अच्छा हमन ओकर ले लाभ ले सकत हन। तो यहर का होते कि एक अतिरिक्त हमन धान के खेती लगाथन, धान के फसल लगाथन, ओकर बीच में पार मेड़ रहते वो में हमन लगा देथन, तो यहर हमार अतिरिक्त है, खेत खाल रोज जाथन हमन देखे बर, पानी रोग व्याधि ये सब ला देखे बर रोज जाथन, तो ओकर संगे संग देख रेख ओकर अरहर के खेत के भी हो जाही। ओकर बर भी हो एला हमन ला खरीफ सीजन में लगाना चाहिए। टिकरा में भी यदि हमन लगाथन, कई ठो टिकरा ऐसे रहते जोन ला कई झन किसान संगवारी में छोड़ देते, तो ओमे हमन अरहर ला बुआई कर सकथन। एकर जो सिस्टम रहते ओला कतार में लगाना चाहिए, कतार में लगा ले कतार के थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन होते, ज़्यादा उपज रहते। अलग अलग एकर किस्म रहते दलहनी फसल के उन्नत किस्म, जैसे पूसा 16 है, निर्मल दुर्गा ले, एहर प्रति एकड़ 10 से 15 क्विंटल तक पैदावार हमला दे सकत है। एकर बोए के जो तरीका रहते वो वैसे रहते कि ज़्यादातर संगवारी मन ला का करते हैं कि

लाइन से पोत है। तो भैया हो ये तो बेरा हो गए, और अब आज के हमर लोकगीत कार्यक्रम है ओला सुनबो ओकर पहली आज के कृषक प्रश्न मंच। उन्नत किस्म के बीज के चयन काबर करना चाहिए, उन्नत किस्म के बीज के चयन काबर करना चाहिए, अपन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले अपन जवाब ल लिख के भेजिए हमन अगोरा में रहो। और बेरा हो गया भैया हमारे लोकगीत के, चल सुनबो ओला ओकर बाद चर्चा आगू करबो।

जय जोहार संगवारी हो। आज है शुक्रवार और हमार चौपाल के संग क्रम होते हमार लोकगीत। इधर आप मन के ईमेल और मया दुलार के चिट्ठी पत्री ले आधारित छत्तीसगढ़ी लोकगीत के फरमाइशी कार्यक्रम। तो चलो सुनथन एक क्रम के पहली गुरतूर और सुघर गीत जिला ईमेल और चिट्ठी पत्री के माध्यम ले फरमाइश करे हैं। गांव खेरथा बाजार जिला बालोद ले प्रकाश ठाकुर बैशाखी भाई किरण यामिनी ठाकुर कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी साहू पंकज साहू सुष्मिता साहू दीपिका साहू रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा पद्मा टाकी नेपानगर मध्य प्रदेश ले सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह मंगला बेन शाह राजेंद्र जी शाह पलारी छत्तीसगढ़ ले हवे नितेश कुमार देवंगन दुर्गा प्रसाद देवंगन पराग टेलर पुनाराम देवंगन कृष्णा देवंगन ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा। माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है मंथिल दास साहू कुमारी देविका साहू संतोष कुमार साहू कुमारी देवी साहू चमन लाल साहू दीपाली साहू और गुणाक्ष देव साहू।

भैया हो छत्तीसगढ़ी लोकगीत हमर छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति परंपरा यहाँ के मेहनत कर किसान और ऐतिहासिक धरोहर के संगम होते। यही ला हमन अपन क्रम हमर लोकगीत में जीवंत करे के प्रयास करथन। तो चलो सुनथन ये लोकगीत जिला सुने बर हमला ईमेल और चिट्ठी पत्री लिखे है। नया गंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ ले विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष साहू, कुमकुम साहू, योगेश्वरी साहू भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, धन्नी राजिम से, समयलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, कुणाल धीवर, युवांश धीवर, माँ महामाया चौक मेघापारा से हैं राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु दिव्या, दीपांजलि, दीपक, टेकलाल पटेल, छोटकू साहू, अनुपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट, रायगढ़ रामभाटा से हैं रोहित जयलक्ष्मी, कोदवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से हैं रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता, शशांक गुप्ता, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा नानघाट, कातल बोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर और रितु राजपूत, रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन।

भैया है मौसम में बदलाव के संग बरसात के एहसास हुआ थे, इसलिए मैं संध्या के बेरा झिमिर झिमिर पानी और चौपाल में बैठ के गर्मा गर्म चाह के संगे संग मुर्रा के कुरुम कुरुम अब बड़ा आनंददायक होते। तो लेवा चाह के चुस्की और सुनो ये गुरतूर गीत। एला सुने बर हमला ईमेल और चिट्ठी पत्री लिखे हमें सहसपुर लोरमी से छोटकी साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सती भाई सत्यम साहू, बुनकर समिति खेरथा बाजार जिला बालोद ले हैं सतीश ठाकुर, महत्रु प्रकाश, अहिल्या गायत्री, सावित्री केसरी, करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा निर्मलकर, कुमारी लोचन विद्यार्थी, गीतिका नोनी, कुष्मिता पिहू, बंगला भाटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, रजनी त्रंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, ग्राम परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सीलोचनी तुषारणी, खुमेंद्र मसीहा, अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, इच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव, विषम दास मानिकपुरी, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से है लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी और शुभम वाधवानी, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।

0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरस रे बादल,
1: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरस रे बादल,
0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरस।

0: सपना कसला गत है मुँह मुराए बैठे नगर
1: भूले बिसरे को दिन तो मोरंगना में बरसे बादल
0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंगना में बरसे

0: सिंगार उजर के हो
1: सर
0: कर जा कल कितना मैं तै खोज तस पूजा दर
1: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नामे बरस रे बादल
0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नामे बरस रे

ही कड़ी में है भैया हो हमला फरमाइश कर रहे हैं अपन पसंद के गाना सुनने पर बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य लिहावे रामचंद माखीजा काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा संध्या माही पूजा छुटकी शरद कुमार भोड़वानी कीरत राय भादवानी दीपक घनशानी प्रदीप कुमार साहू बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ ले शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास ओमिन उत्तरा प्रमिला यमुना जमुना कुमारी अंजू मंजू और कुमारी युति देवदास यही गीत के पसंद करता है ग्राम गोड़मर्रा पोस्ट सूर्य गांव तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ ले देव प्रसाद देवदास राम अवतार देवदास सोनू मोनू और पवन देवदास चांदनी चौक गंडई पनरिया से पवन कुमार सेन प्रभादेवी सेन लक्की विक्की नानू रवि ने रौनक सेन मनोज कुमार यादव सोनम विशाल ज्योति गोपी राधे राम लाल यादव और राजू फुलब

भैया हो क्रम हमार लोकगीत अपन आखिरी पड़ाव तरफ बढ़त है, फिर जाति मिलाती चलो सुनथन ये सुघर आप मन के पसंद के गीत। एकर फरमाइश करे हैं हमार संगवारी ताहरा अहिवारा जिला दुर्ग ले पोषण बन छोर चंद्र किरण प्रीति छाया बन छोर ग्राम खट्टी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी शर्मा ओंकार शर्मा भागीरथी पटेल अवध पटेल भीषम दास मानिकपुरी जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी गेंदलाल श्रीवास संतोष श्रीवास हट्टी चौक बिलाईगढ़ से खीघराम देवांगन रेणु देवांगन रजनी देवांगन पिंकी देवांगन भाटापारा से दान सिंह रावत दानु पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत भूरसुदा छत्तीसगढ़ से हैं संतोषी भगवानी नेहा चंद्र प्रकाश चिराग और गजेंद्र सेन छत्तीसगढ़ पथरिया भेरवाले चंदूलाल सिंगरोल नारायणी सिंगरोल नोमेश नेहा वानिया सिंगरोल भाई रामचंद्र जी देवांगन घासीराम घासी मामा सलाम युवराज सिंह कुमारी सुनैना पिंकी गीता यश प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती भागवत देवांगन पदुम देवांगन समस्त नंदर वार कुटुंब परिवार कोष्टा पारा जुड़वा चौक सारंग पाले देवी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे छत्तीसगढ़ भूरसुदा से भगवानी संतोषी सेन गजेंद्र चिराग सेन चंद्र प्रकाश सेन और नेहा सेन।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: संदेश सुनत रहन भैया, होकर पहली हमर लोग गीत सुनत रहन गुरतुर गीत। भैया हो हरी खाद की उपयोगिता खेत बचाओ अभियान। भारत सरकार द्वारा भैया हो मिट्टी की सेहत सुधारे खातिर बर, कृषि लागत कम करे खातिर बर ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाते खेत बचाओ अभियान। एकर मुख्य उद्देश्य होते भैया हो किसान मन के रासायनिक खाद के असंतुलित उपयोग ला कम करके हरी खाद जैविक विकल्प और मिट्टी परीक्षण ला अपनाना, एकर बर जागरूक करना। रासायनिक खाद में कमी भैया हो, कम खाद, सही खाद और समझदारी से खाद के संदेश देना। मिट्टी की उर्वरता और कार्बनिक तत्व ला बढ़ाए बर ढेचा, सनई, मूंग आदि दलहनी फसल ला हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करके एकर प्रशिक्षण देना। जैविक उत्पाद और प्राकृतिक खेत के तरीका ला किसान मन के आय बढ़ाना। नकली कीटनाशक ले बचाओ, प्राकृतिक रूप ले माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्व वाला हरी खाद हर जोड़ते। मिट्टी की जल धारण क्षमता हर बढ़ते, हानिकारक जो रसायन रहते वो हर घटते। तो भैया हो हमला हरी खाद के उपयोग करना है, खेत ला बचाना है, एकर व माटी के जांच लगला करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 23वां किस्त काल हस्तांतरण होही, किसान मन के बैंक अकाउंट में जमा होही भैया हो। एकर बार हमर जिला स्तर में जो कार्यक्रम होही ओहर KVK में होही, कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम होही 3:47 में। और इमें सब किसान संगवारी मन ला घला आमंत्रित करे गए है। तो ये हमर जिला के किसान मन दोपहर 3:45 में अपन KVK जा सकत हन। हमर रायगढ़ जिला में भैया हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त के हस्तांतरण में रायगढ़ जिला में 85,592 किसान मल्ला 17.12 करोड़ रुपया राशि के हस्तांतरण होही। तो भैया हो हमन एक चर्चा करत रहन। और अब बेरा हो गए है आज के किसान के गोट बात सुनने के। खरीफ में रोपा के लिए नर्सरी की तैयारी और फसल प्रबंधन विषय पर रायगढ़ ब्लॉक के ग्राम महापल्ली के उन्नतशील किसान शेष चरण गुप्ता जिले मोर बातचीत है, ओला सुन लेथन, फिर चर्चा आगू बढ़ाबो।
5: नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। चौपाल के बैठकी में बैठे हैं, नवे बेरा जाना था आप मन अपन किसान संगवारी मन संग बातचीत करथन, नशील कृषक मन संग बातचीत करथन और अलग अलग कहना मन हमारे चौपाल के बैठकी में आते हैं, मन अपन अनुभव ला साझा करते हैं, तकनीकी जानकारी देते हैं और आज के जो परिस्थिति है, आज के जो हालात है वो में अपन ला कैसे खेती किसानी करके अपन आय ला बढ़ाना है, आमदनी ला बढ़ाना है, खेती की लागत ला कम करके, तो ओकर लिए अलग अलग जो हम चर्चा करथन वो मन अपन अनुभव ला बताते हैं, वो अनुभव के लाभ हमारे आने की छान संगवारी मल्ला मिलते। तो आज ऐसे हमारे संग में हमारे चौपाल की बैठकी में एक किसान संगवारी हमारे संग में बैठे हैं, एमन रायगढ़ ब्लॉक के महापल्ली गांव के हैं और एमन के नाम है शेष चरण गुप्ता जी। एमन खेती किसानी के गुताला करते हैं और लंबा समय से करते हैं। तो अभी जैसे खरीफ सीजन में रोपा लगा था हमन, तो रोपा के पहली नर्सरी तैयार कर थन, तो ओकर बारे में चर्चा करबो कि नर्सरी कैसे तैयार करते हैं और नर्सरी इकला कतक जब हो जाते, कतक इंच होते, कतक दिन में तैयार होते, ओकर बाद ओला रोपा लगा था हमन खेत में, तो ये सब विषय

0: चर्चा करबो। तो गुप्ता जी, सबले पहले तो हमारे चौपाल के बैठकी में आपके बहुत बहुत स्वागत है और हमारे तरफ ले आप ला राम राम है, जय जोहार है,
1: जय जोहार।
0: तो गुप्ता जी, ये बता, जैसे अभी खेती किसानी खरीफ सीजन में चला थे और आप किसान है तो निश्चित तौर पे काम काज ला शुरू कर दा रहे भैया, रोपा के जैसे एक खेती किसानी के में जो रथे जो महत्वपूर्ण रथे रोपा में किसान मन के कहना रथे कि थोड़ा सा उपज ज्यादा मिलते, तो रोपा लगा के पहले जो नर्सरी हम तैयार करते हैं ओकर एक थोड़ा सा तकनीकी रूप ले बता कि कतक दिन में नर्सरी तैयार हो जाते, ओकर बर खेत के तैयारी कैसे करते हैं और कब ले वाला शुरू करते हैं।
1: तो बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे खेती है जो ना है वो हर मानसून आधारित खेती है हमारे यहाँ।
0: अच्छा।
1: करीब करीब 16 जून के बाद ही मानसून लगभग
0: सक्रिय होती है।
1: तो क्या है आजकल लेट थोड़ी लेट भी चलाते 20 जून 22 जून 23 जून तक के बाद बरसा हो थे।
0: अच्छा।
1: ऐसे में हम थोड़े से थरहा लगाना जो है ना परेशानी जाते कि पानी की कमी रहते पानी नहीं हुए।
0: अच्छा।
1: तो एक से हम जो जगह में पानी है वहाँ पानी खींचे खींच के सिंचाई करे और चिखला करे पड़ते अगर मानसून आगे नहीं आए तो अगर मानसून जैसे आगे से हम जो मानसून के पानी है ओकर में ना अपन चिखला करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अभी तो हम कहा है कि मानसून की बारिश नहीं हुई से ऐसे में अपन खेत के जुताई जो पहले प्री मानसून पानी गिरे रही थे जुताई कर ले हम और वो हर अभी तराई ले पानी लेके वो चिखला कर दो हम
0: अपन खेत ले तैयारी कर
1: तैयारी कर रहे और चिखला आ रहे वो भी कल मैं तो कल ही मैं डाले हाँ ताकि बीज ला जो है ना पानी में बोर के रख दे हाँ तीन दिन में गाली हो जाए धान के अंकुरण हो जाए।
0: अच्छा।
1: तो तीसरे दिन में कल अपन खेत ला चिखला करके वो थरवाड़ा लगा डाल देगो तो लगभग 21 दिन के बाद वो अपना लगभग 1 फीट के आसपास वो धान हो जाए
0: खड़ा
1: हो जाए तो ओकर बाद हम पानी जैसे मानसून में बारिश हो जाए 21 दिन के अंदर में हो जाए तो अपन खेत की तैयारी होकर पहले कर डाल वो और वो महामन रोपा वो धान की फसल की जो रोपा है रोपा लगा वो तो मैं ऐसे जो पद्धति है कि मैं रोपा लगाए में अपन ना ज्यादा आमदनी होते है ऐसे प्राय होते हमारा बहुत इनकम होते हैं।
0: किसान संगवारी मन ली हम चर्चा करते हम तो पता चलते कि जैसे बोनी है तो बोनी तीन प्रकार के होते खुर्रा बोनी होते बतर बोनी होते और लही बोनी होते। तो बोनी के अपेक्षा जो रोपा है रोपा में क्या होते कीड़ा मकोड़ा के प्रभाव कम रहते दूसरा खरपतवार नहीं हुए ऐसे कथे तो ये कथक कहाँ तक सही है।
1: ये बात बहुत सही है खरपतवार है मकान है ना चिखला में सब सड़ जाते हैं और एक तरह से जो और खाद बन जाते हैं हरा खाद बन जाता है किसान लाइक एक फायदा है बहुत सारा खाद बन जाए वो हरा खाद हो जाए और जो उत्पादन वो है और बिना जो कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं लगे हो मैं पिछले साल में जो खेती कर रहे हैं तो मोला स्प्रे मशीन लेके की जरूरत इतनी पैसे और मसीदा खेत में लुए बर गए रहे धान।
0: अच्छा मतलब कुल मिला के रोपा के जो खेती कर रहा वो मैं और दोबारा जाए बर नहीं पड़ी
1: नहीं पड़े वो ऐसे खेत है वो खेत में तो मोला पानी देखे बर भी नहीं लगे।
0: अच्छा बहरा खेत है
1: बहरा खेत है
0: तो बोनी के बजाय रोपा में ज्यादा उत्पादन होते
1: हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्पादन होते हैं किसान मन आजकल क्या करता है अधिकतर नांगर भी नहीं आदमी के पास में है ना कोई ना बैला नहीं रखा था ना भैंसा नहीं रखा था तो ऐसे में जोताई के परेशानी होते क्या होता है कि ट्रैक्टर में ब्यासी के काम नहीं हो सके तो ऐसे दिक्कत हो जाते है किसान मन का भाई अगर नांगर नहीं रखा था बैला नहीं है कछु नहीं है ऐसे में ट्रैक्टर में ब्यासी
0: नहीं हो
1: संभव नहीं है तो आदमी वो क्या करते अछरा खेती करते अछरा खेती में जोताई कादो के जोत हो जाते और बाद करते तो ब्यासी भी नहीं हो पाते ऐसे कांपर मार के ऐसे खाद वाद छिड़काव करके उत्पादन ले तो हालांकि उसका उत्पादन अछरा खेती में नहीं हुए जतका की
0: रोपा में होते। तो कहीं ना कहीं जो अभी एक व्यवस्था है खेती किसानी के उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है कहा तो काबर कह बैला भैसा नहीं है तो बोनी जो होते बोनी वाला में ब्यासी करना जरूरी रहते और रोपा में जरूरी नहीं रहे तो अतिरिक्त खर्चा है ब्यासी कर ही दो वो कर ले भी थोड़ा सा कुछ कुछ बेनिफिट मिल जाते क्या तो मतलब कुल मिला के
1: रोपा है जैसे अपन खुर्रा बुआई करे हैं चाहे अछरा भी करे हैं तो उनमें अगर हम ब्यासी करते हैं तो ब्यासी करे ले करते हैं उनमें जो है नए कोड़े या उनके सबको पलाज एक तरह का थरा जगह टाइप हो जाते वो हो जाते वो मालूम ना। अगर ब्यासी नहीं करो तो अगर ब्यासी कर तो उत्पादन हमें ज्यादा होते हो मैं ब्यासी करा था। अब ब्यासी नहीं करेंगे थोड़े से कम होते ब्यासी करना करेले का होता है कि जो जड़ है जमीन के अंदर में रह जाते ये तो जो जड़ धान के जड़ है ऊपर में रहते तो ज्यादा पानी बरसा अगर बाद में हो गया जैसे दशहरा कार्तिक महीना में जब धान पके की स्थिति में रहिए तो हवा पानी जमे तो गिर सकते हो
0: गिर जाते है तो कुल मिला के रोपाहार ही खेती किसानी के अभी के समय में अच्छा है कहा तो
1: बिल्कुल बिल्कुल अभी के रोपा पद्धति है ठीक है लेकिन मजदूर के अभाव के चलते भी ये है मैं ज्यादा आदमी रोपा पद्धति का नहीं अपनाते हैं लोग सिंपल एकदम खेती करते हैं ना अचरा खेती करके हम और खुर्रा बोए करके खुर्रा बोने ठीक ये होते कि उसमें वो खरपतवार ज्यादा होते हैं आजकल दवाई अगर आ जाते हैं तो दवाई छिड़काव
0: छिड़काव कर रहे थे
1: उन्हें बोला नीनानाशक
0: कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तो ये तो ठीक हो गए। गुप्ता जी ये बताया जैसे बीज की कहते हैं तो नर्सरी लगाए पर भी बीज तो जरूरी है उमे कौन सा बीज लगा था घर के बीज लगा था कि बाहर के बीज ला
1: आजकल किसान ऐसे हो गए हैं सबको धान लग घर में धान नहीं रखे सब बोला मंडी में भेज देते दो पैसा आ जाएगा कि भेज देते सरकार का करते है कि मतलब सोसाइटी में धान के बीज की उपलब्ध करा देते
0: अच्छा
1: तो वो सुविधा मिल जाती तो किसान खरीद लेते सोसाइटी में खरीद लेते या तो फिर अच्छे इनकम लेंगे तो जो अच्छा बीज है अलग अलग किस्म के दुकान मान ले व्यापारी मन चले बीसो के यूज कर रहे थे किसान।
0: अच्छा तो कुल मिला के प्रमाणित बीज जो नोटिफाई रहते जो सर्टिफाइड बीज रहते उपयोग ज्यादा करते ज्यादा कर रहे
1: अच्छा, ज्यादा कर रहे और देसी धान के अगर करते हैं तो पहले में किसान जाकर यहाँ पैसा ठीक समय में नहीं है तो अपने बीजाला रखे रहते घर में बाकी जो किसान रहते हैं तो अधिकतर दुकान सोसाइटी ले चाहे दुकान ले खरीद के काम बीज व्यवस्था करते हैं।
0: अच्छा तो संगवारी हो देखा कितना बढ़िया जानकारी रही से अब नर्सरी जो तैयार होते उकर बहुत सारा तकनीकी रूप से जानकारी हमला होना चाहिए ये किसान मन के अनुभव ना हमन अपन रेडियो के माध्यम से साझा करते ना एक लाभ ला सब किसान मन ला मिलते। गुप्ता जी आप बहुत अच्छा जानकारी देव एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जय जवाहर
1: जय जवाहर।
2: तो किसान के बातचीत सुनत रहन भैया हो खरीफ में रोपा के लिए नर्सरी की तैयारी और फसल प्रबंधन विषय में रायगढ़ ब्लॉक ग्राम महापल्लिक उन्नतशील किसान शेष चरण गुप्ता जिले मोर बातचीत रही बहुत अच्छा बातचीत रही से और होते कहा कि भाई अब खरीफ सीजन में ज़्यादातर जो संगवारी मन है अलग अलग तरह के खेती किसानी करते हैं कोनो रोपा लगाते हैं कोनो खुर्रा बोनी करते कोनो लोहियारा बोनी करते माने मौसम के हिसाब ले खरीफ सीजन के जो खेती किसानी के बूता रहते ओहर मौसम के हिसाब से ही होते अच्छा पानी गिर देते शुरुआत ले पानी गिर देते तो खेती किसानी के बूता अलग तरीका ले होते। अब जैसे मोटा मोटी जून 15 जून के आसपास मानसून आ जाते करके कहते और आ भी जाते कई बार लेट भी हो जाते तो इस बार अभी मानसून के अभी तक तो फिलहाल उसने आसार नहीं दिखाते पानी वानी गिरत नहीं है कभू इती उती थोड़े थोड़े जरूर गिरा थे कहीं हवा तूफान घला चला थे लेकिन अकरस जो जोताई होते अभी के समय में पानी गिरी तो सब पहले किसान मन अकरस जोताई करें ओकर बाद फिर हो सका थे कि ओच में उमन खुर्रा बोनी टाइप के कर दें तो अलग अलग तरीका खेती किसानी के होते लेकिन रोपा जो होते ओहर जब तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं रही तब तक नहीं हो पाए तो रिस्क वाला काम है। यदि पानी है बोर की सुविधा है सिंचाई की सुविधा है तो रोपा लगाए जा सकते और मान लो नहीं है और रोपा लगा देना और पानी है नहीं गिरी अच्छा ले तो दिक्कत हो सकते ओकरे पर थोड़ा सा अपन ला सोच समझ के बूता काम ला हम ला करना चाहिए। भैया हो हरी खाद के चर्चा करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी चर्चा करें सुंदर काया स्वस्थ विचार योग से माँ के घर परिवार 21 तारीख के योग दिवस हम मनाबो और भैया हो देखा तो ये प्राचीन समय ले चलाता आते हमन लेकापन में जब तराई ला नहाए बर जान तो बर पेड़ के नीचे बहुत जन साधु बाबा मन बैठे रहें और मन अलग अलग तरह से व्यायाम करत रहें कसरत करत रहें योगा करत रहें

कोई सूर्य नमस्कार कर रहे थे, कोई और कुछ कर रहे थे। तो देखे बर तो बहुत पहले ले हमन देखा था आथन, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन होते। जोन चीज ला पहले समय में करत रहिन वो में थोड़ा सा आउ आधुनिकता आ जाते, आउ अच्छा करते हैं ऐसे करके। तो 21 जून के हर साल योग दिवस मनाए जाते। शरीर ला यदि स्वस्थ रखना है हमला तो योग हर एकदम जरूरी है, ओला करना ही पड़ते। खबर कि जब तक शरीर हर स्वस्थ नहीं रही तो हमन अपन ओला अपन के जो मन रहते वह हर स्वस्थ नहीं रहे। कहे जाते स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन के निवास होते। ये स्लोगन हर भैया हो सदियों ले हमन सुनत आथन, प्राचीन समय ले सुनत आथन। एकर अर्थ ये हवे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसर के पूरक होते। तो जब हमन के शरीर निरोगी और ऊर्जावान होते तो हमारे दिमाग सकारात्मक, तनाव मुक्त और एकाग्र रह सकते। शरीर में कोनो प्रकार के दुख तकलीफ होते तो पूरा ध्यान वही में केंद्रित हो जाते, एकल मानसिक मानसिक शांति भंग हो सकते। ओकरे बर भैया हो हमार शरीर ला स्वस्थ रखे खातिर बर हमला संतुलित भोजन के संगे संग कसरत व्यायाम योग की जरूरत होते। प्राचीन समय में भी ये सब चीज़ हर चलत रहीस, अभी भी चलत है। तो भैया हो योग करना है, शरीर ला स्वस्थ रखना है, अपन योग करके सुंदर काया स्वस्थ विचार योग समय के घर परिवार एला हमन सार्थक कर सकथन। कदन फसलों की खेती सेहत के साथ आमदनी देती। भैया हो कदन फसल मतलब श्री अन्न, मोटा अनाज, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा एला कथें। एहर भैया हो सेहत के लिए बहुत अच्छा होते। एमें बहुत सारा प्रोटीन मिलते और एकर उपयोग आजकल लगभग सबो जन करत है। करत ओकर बर है कि एहर शरीर के लिए अच्छा होते, सेहत के लिए अच्छा होते। ओकर बर एकर उपयोगिता हर दिनों दिन बढ़त जात है। और एकर जो फसल है लगाए के पहली तो कम हो गई रही इस बीच में, लेकिन धीरे धीरे अब हर बढ़त है। इखानी भी बहुत सारा बहुत हमारे किसान संगवारी मन एला लगाही और सेहत के संगे संग एहर आमदनी भी अच्छा देते। एकर समर्थन मूल्य भी घोषित कर दे करे जाते और एकर खरीदी भी अच्छा होते। तो कुल मिला के हमन ला एहर फायदा भी दे सकत है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भैया हो जो कारीगर रहते हैं, जो मन हाथ में काम करते हैं, जैसे बढ़ई है वो हाथ में नांगर बनाते और बहुत सारा चीज़ बनाते। गाड़ी बैला के जो चक्का रहते वाला बनाते, गाड़ी बैला ला बनाते, हाथ के काम करने वाला हला ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में शामिल करे जाते। 18 प्रकार के जो काम है जैसे बढ़ाई है, मोची है और नाई के काम करने वाला है, सुनार है, मटका बनाने वाला है, जो हांडी बनाते हैं कुम्हार मन ओ मन है, ऐसे करके 18 प्रकार के जो काम है वाला शामिल करे जाते। एकर बर एक आवेदन लगाए बर पड़ते, ओकर बाद ओ मन ला ट्रेनिंग भी दे जाते। और ट्रेनिंग के दौरान ओ मन ला 500 रुपया के एक वो राशि भी दिए जाते। ओकर बाद काम करे बर व्यवसाय करे बर आसान लोन भी ओ मन ला दे जाते। तो ओ मन अपन बढ़िया दुकानदारी कर सकते हैं, बढ़िया से व्यवसाय ला चला सकते हैं। एहर सरकार के तरफ ले सहयोग रहते, बहुत कम ब्याज रहते लोन ओ में जो देते प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में। तो एकर बर हमला अलग अलग एक व्यवस्था बना के रहते सरकारी तरफ ले, ओ मन ले हमन सहायता लेथन, मदद लेथन और ये बूता ला हमन करथन। तो जोन साथी मन ये बूता ला करते ओ मन के लिए एक बहुत अच्छा योजना है। ओ मन ला सहयोग मिल जाते, मदद मिल जाते, सहायता मिल जाते और मन अपन की काम बूता ला अच्छा से कर सकते हैं सरकार के मदद के सहायता ले। तो ये बूता हर
ओ मन के आमदनी के एक ठा जरिया बन जाते। एकर संगे संग भैया हो अब जाए के बेरा घला हो गए ना, तो अपन रेडियो संगवारी बंशील देव विदा, राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुने थे किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:20 हो चुकी हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में अदीम हाशमी के लिखे इस गीत को।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा।
3: और आपके अपने लोग
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात के 8:30 मिनट में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनाते हैं अमित कुमार की आवाजों में फिल्म जीवा का ये गीत।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। तो समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक

0: निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग। दिस
11: देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके लिए।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत, स्वर जसपाल सिंह का, और फिल्म का नाम है श्याम तेरे कितने नाम।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंधी। गीत रचना गुलजार साहब की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ही गाया हुआ, फिल्म का नाम है महाचोर। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: क्या?
1: अरे बाबा मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। एक तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार है किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 दिन बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के

0: अंदर मानसून के आय के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। ये अभियान के तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना मन के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है बताइन कि नियन नेल्लारार योजना के सफलता ला आगो बढ़ात रायपुर बिलासपुर दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिला में 31 योजना मन के संतृप्तिकरण सुनिश्चित करे जाही। उमन किहिन कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग विभाग के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था ले लोगन मन ला बेहतर सेवा उपलब्ध कराए जाही। मुख्यमंत्री है किहिन कि हरेक परिवार तक शासन की योजना पहुंचे ले ही विकसित छत्तीसगढ़ के सपना साकार होही। उमन बताइन कि अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा आवास और रोजगार खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा महिला सशक्तिकरण कृषि कौशल विकास और बुनियादी नागरिक सेवा ल शामिल करे गए है। मुख्यमंत्री है बताइन कि अभियान के क्रियान्वयन 3 चरण में करे जाही। पहली चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण करे जाही। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ा के आधार में संभावित परिवार मन के पहचान करके ए योजना पर बेसलाइन तैयार करे जाही। उन्हें दूसरैया चरण में ग्राम क्लस्टर और विकासखंड स्तर में विशेष संतृप्तिकरण शिविर रखे जाही। इस शिविर के माध्यम ले पात्र हितग्राही मन ला योजना ले जोड़े जाही और जरूरी दस्तावेज और सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करे जाही। तीसरैया और आखिरी चरण में सतत निगरानी समीक्षा और मूल्यांकन के प्रक्रिया के माध्यम ले योजना मन के प्रगति के आकलन करे जाही। संग्रह जरूरत के अनुसार सुधार के कदम घलो उठाए जाही। केंद्र सरकार है किसान मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के अवधि 15 दिन बढ़ा दे है। ये निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत ले गए है। कृषि मंत्री रामविचार नेतामहा प्रदेश के किसान मनला बाढ़े बेरा के फायदा उठाए और पास के सहकारी समिति में जाके अपन उपज बेचे के अपील करीन है। ओमन किहिन कि एकर ले किसान बाजार के उतार चढ़ाव ले बांची और ओमनला फसल के उचित दाम मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किस्त जारी करही। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है बताइस कि देश भर में 94 करोड़ ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में सीधा 18,880 करोड़ रूपया ले ज्यादा के राशि अंतरित करे जाही। एक किस्त ले 2,18,00,000 ले ज्यादा महिला किसान मन लघलो फायदा मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए के मौका में प्रदेश भाजपा कोतिले विशेष जनसंपर्क अभियान चलाए जाते। यही कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू हा मुंगेली में वरिष्ठ नागरिक मन ले सौजन्य भेंट करीन। इस दौरान श्री साहू हा केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजना विकास कार्य और आने आने उपलब्धि के जानकारी दीन और ओमन ले गोट बात करीन। उन्हें गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा में छायाचित्र प्रदर्शनी और पंजीकरण शिविर के आयोजन करेगीस। इति रायपुर जिला के आरंग में राखे गए शिविर में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत सिंह साहब केंद्र और राज्य सरकार के योजना मन के जानकारी दिन। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऊपर केंद्रित रही। एकर तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 20 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले एफएम और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बांचे समाचार को थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA इतवार के हवैया राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG के पुनर्परीक्षा में शामिल हवैया उम्मीदवार मन पर एक ठिन आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करे है। NTA स्पष्ट करे है कि जम्मू आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल

ओखर सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम ले भेजे जाही। एजेंसी ह उम्मीदवार मन ला सलाह दे है कि एनटीएलए भेजे गए कोनो भी संदेश ऊपर भरोसा करे के पहली नीला सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाव के जांच कर लेवे। इही बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ह नीट परीक्षा में शामिल होवैया परीक्षार्थी मन के सुविधा पर विशेष रेल सेवा के व्यवस्था करे है। रेलवे कोती ले कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के संचालन के 20 और 21 जून के करे जाही। इखर अलावा हसदेव एक्सप्रेस के अस्थायी विस्तार दुर्ग तक करेगे है। यात्री मन के अतिरिक्त भीड़ ल देखत 10 ठीन ट्रेन में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच घलो लगाए जाही। इति नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रदेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी मन में बढ़त मानसिक तनाव ल देखत बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू करे है। ये सुविधा मनोरोग विभाग डहाल ले उपलब्ध कराए गए है। विद्यार्थी 18 जून ले 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 में तनाव चिंता काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया ले जुड़े समस्या पर विशेषज्ञ मन ले सलाह ले सकें। राज्य सरकार है संजय अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करे है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग डहाल ले इस संबंध में आदेश जारी कर दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है श्री अग्रवाल ला नियुक्ति में बधाई दिन है। उमन कहिन कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण के महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री है भरोसा जताइन कि श्री अग्रवाल के अगुवाई में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता ला नवा गति मिली। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रायपुर स्थित उखर निवास में सौजन्य भेंट करें। इस दौरान योग के संवर्धन और प्रदेश में योग संबंधी गतिविधि ल और ज्यादा प्रभावी बनाए ले जुड़े विषय मन ऊपर चर्चा हुई। प्रदेश में रेत उत्खनन परिवहन और भंडारण ऊपर सरलक कार्रवाई करे जाते। इही कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में राजस्व और पुलिस के संयुक्त टीम है अवैध रेत परिवहन करत 10 ठीन हाईवा ला जब्ती करे है। सिमगा एसडीएम है बताइन कि सिमगा गरा जांच अभियान चलाया जात रहीस। इही दौरान गाड़ी मल्ला रोक के परिवहन पास संबंधी दस्तावेज मांगेगीस, लेकिन 10 वाहन के चालक मन को तीले दस्तावेज नहीं दिखाएगीस, जेखर बाद टीम है पंचनामा तैयार करके आगू के कार्रवाई करिस। उती बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के अगुवाई में खनिज विभाग और पुलिस के टीम है मिंगाचल नदिया में पाछू देर रतिया छापा मार के रेत उत्खनन करत जेसीबी पोकलेन मशीन और 4 ठीन वाहन ल पकड़ीस। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के आए के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ ले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुआ तमिलनाडु तक एक ठीन द्रोणिका बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। कांग्रेस राज्य सरकार ले बिजली के दर में करेगे बढ़ोतरी ला तुरते वापस लेके और उपभोक्ता मन ला राहत दे के मांग करी से। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुंगेली में रखे गए पत्रकार वार्ता में आरोप लगाइन कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरलग 5वां घव बिजली के दर में बढ़ोतरी करेगे है, जेखर सेती घरेलू व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ता मनु पर अतिरिक्त आर्थिक बोझा पड़ी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घव फेर। प्रदेश में सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। इकर तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार है किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन पछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 दिन बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में

0: कार्यक्रम पर्यावरण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
3: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज, ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
2: बिल्कुल अंशु, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
3: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना और

0: यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल आए हैं रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई, उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों

0: घूम रहे हैं और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियाँ अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा,

0: हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ, उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआई में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लेटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बन के इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में, विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन है, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन है, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन है, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें, या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया, और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवादी टॉप के, उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफ़ी ढीलपना आ गया, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए, मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि

0: आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
1: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
0: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं, तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें, तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं, तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले, तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है, उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतरराष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए, तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है। इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं, और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
0: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
2: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
0: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए कि पहले और दूसरे भाग का प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी रायगढ़ के प्रिय श्रोताओं, मैं हूं रघुवर खेत साव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। मैं कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, आपकी पसंद के गीतों और ढेर सारी बातों के साथ। ये रहा आज का पहला कॉल। हेलो।
1: हेलो। हाँ सर जी।
0: हाँ सर जी नमस्कार, आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में आपका स्वागत है।
1: हाँ सर जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर जी मेरा नाम बजरंग साहू है, मैं ग्राम देवरघट्टा जिला शक्ति से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: बजरंग साहू?
1: हाँ सर जी।
0: देवरघट्टा ये किधर है?
1: सर जी ये तो है ना जो रायगढ़ चौक से सीधा पड़ता है भद्री चौक, फिर सीधा देवरघट्टा ही आता है सर जी, 4 किलोमीटर अंदर फिर डबरा आ जाता है, 12 किलोमीटर मेन रोड है सर
0: जी। जी जी जी। बताइए क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम रविवार 21 जून को मनाने जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में योग को किस प्रकार से देखते हैं?
1: सर जी योग हमें क्या है ना, हमें योग से करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी अच्छा होता है।
0: जी जी।
1: दिमाग भी फ्रेश होता है। आयुर्वेद का तो कथा है ना कि सुबह शाम की हवा 1,00,000 रुपए की दवा।
0: जी जी जी।
1: तो मैं तो रोज दिन दौड़ने जाता हूँ सर जी, मॉर्निंग में और सुबह, दंड दबाए ठग भी करता हूँ रोज 200 बार, तो अनिवार्य कर दिया हूँ सर जी, तो एकदम मैं स्वस्थ हूँ सर जी।
0: जी जी बहुत बढ़िया, इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है।
1: हाँ सर जी।
0: और किसी भी प्रकार की बीमारी भी हमसे कोसों दूर रहती है।
1: हाँ सर जी।
0: जी जी बताइए आज कौन सा गाना पसंद करेंगे?
1: सर जी नागिन फिल्म का है कि आजकल मुझे कुछ याद रहता नहीं।
0: जी जी जी जी जी जी। मोहम्मद अजीज के गाया हुआ यह प्यारा सा नगमा है।
1: हाँ सर जी।
0: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद सर जी।
0: जी जी।

0: हेलो
1: प्यार और सत्कार भरा नमस्कार जी। तो
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: मैं दत्त बोल रहा हूँ जी, जिला पटियाला नाभा पंजाब से जी।
0: और बताइए आपके तरफ मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो अभी सर पंजाब में गर्मी पड़ रहा है जी, बहुत ज्यादा।
0: जी, बारिश का तो अभी अता पता नहीं है।
1: बारिश परसों हुआ था जी।
0: जी, योग दिवस को आप किस नजर से देखते हैं? 21 जून को रविवार को हम मनाने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, जो योग है जी, योग तो हर एक आदमी को करना चाहिए, थोड़ा और कम करना चाहिए।
0: जी,
1: हम भी करते हैं थोड़ा बहुत, शहर भी करते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं।
0: जी, साइकिल चलाने से तो शरीर एकदम तंदुरुस्त और फिट रहता है।
1: बिल्कुल फिट रहते हैं, और खुराक भी अच्छी खाना चाहिए,
0: जी,
1: देसी खुराक खाना चाहिए, जो अच्छी खुराक होती है उसको खाना चाहिए आपको।
0: जी। तो आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद
1: देखो जी,
0: आते हैं?
1: आकाशवाणी रायगढ़ का तो आपको पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे जी मैं।
0: जी,
1: आपसे पहली बार बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है जी।
0: हाँ, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे श्रोताओं का फोन आता है तो अलग अलग क्षेत्रों से हमसे जुड़ते हैं श्रोता, वहाँ के बारे में पता चलता है।
1: जी बिल्कुल, हमको जी देखिए, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, आकाशवाणी के जरिए हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं जी, बहुत दूर दूर के चैनल हम भी सुनते हैं जी।
0: जी, आजकल तो हमारे आकाशवाणी के आप सभी कार्यक्रम यूट्यूब में, फेसबुक में भी देख सकते हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, फेसबुक पे ही देखा था जी आपका प्रोग्राम का जी, एड फेसबुक पे ही देखा था हमने जी।
0: जी, इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: देखो जी, गाने तो आकाशवाणी पे चलने वाले सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बचपन मूवी का गाना है जी, आया है खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया है जी,
0: जी,
1: बचपन मूवी का सॉन्ग सुनेंगे जी।
0: आकाशवाणी में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
0: आपको
1: बहुत
0: सुनवाते
1: धन्यवाद
0: हैं
1: सर जी,
0: आपके ही पसंद का ये प्यारा सा नगमा।
1: ठंडी आपको जी।
0: जी, धन्यवाद।

0: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए।
1: मैं किरिमनी कोडासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: कोरिया छत्तीसगढ़ से
1: जी, और आपका कार्यक्रम में फोन किया, लीजिए फिर सुनिए में, और फोन लगाया था, बहुत अच्छा लग रहा है और बातचीत हो रहा है, खुशी हो रहा है। मौसम का सर बेहाल है, सुबह धूप तेज था, अभी बादल किया है सर और हल्का धूप भी कम है, मतलब उलट पलट मौसम हो रहा है सर। और ये बरसात का उस समय में कब पानी गिरेगा, कब आएगा, कब मानसून जम के बनेगा सर, ये मतलब की कहा नहीं जा सकता, लेकिन मानसून जब भी बनेगा लेकिन पानी जम के आएगा।
0: जी जी, अभी तो मौसम थोड़ा सा बदल रहा है ना,
1: जी जी,
0: बारिश होने की संभावना है।
1: जी सर।
0: श्रोता बताइए, योग दिवस को आप किस प्रकार से देखते हैं?
1: योग दिवस सर, हम इसको अपने स्वास्थ्य के प्रति तो फायदेमंद के हिसाब से देखते हैं सर।
0: जी जी,
1: क्योंकि योग करने से हमारा शरीर, मन और शरीर स्वस्थ रहता है
0: जी।
1: हमें योग करना चाहिए सर, योग तो हम बचपन में करते थे स्कूल के समय में सर।
0: जी जी,
1: योग करते हैं जैसे पैदल खुद चलते हैं सर, हाथ पैर मिलाते हैं
0: जी जी,
1: शरीर का हमको करते हैं सर
0: जी। योग के लिए भी हमको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए
1: जी सर।
0: जी जी,
1: बीमारी परेशानी कष्ट और मन पसंद भी रहता है सर, योग करने से मुझे हर चीज का परेशानी से मुक्ति मिलता है।
0: जी जी जी सर, बताइए कार्यक्रम में आज आपको कौन सा गाना सुनवा दें?
1: सर फिल्म सुनाएंगे सर, फिल्म का नाम है चिराग, गीत की मेरे छाई बरखा बहार पड़े अंगना फुहार।
0: जी, चिराग, चिराग फिल्म का छाई बरखा बहार।
1: जी, कर लता मंगेशकर।
0: जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। आप अपने पसंद का गाना सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कार्यक्रम है,
1: नमस्ते
0: लीजिए फिर सुनिए।
1: सर। सुनिए
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं जुड़दा सुनी खमारी
0: जी,
1: और गाना सुनना है आशिकी का, धीरे
0: अच्छा आशिकी
1: धीरे
0: फिल्म का कौन सा गाना?
1: धीरे धीरे से।
0: जी, आकाशवाणी के प्रोग्राम को आप कब से सुन रहे हैं?
1: ये तो लगभग मैं 2007 से सुन रहा हूँ।
0: जी,
1: तो विद्यार्थी जीवन से ही ये तो बहुत सहयोग किया है पढ़ाई में।
0: जी,
1: मतलब एक तरफ एफएम चालू रहता था, एक तरफ पढ़ाई भी चालू, इस तरह से
0: जी
1: जीवन का आनंद लिए।
0: अश्वनी जी, बताइए योग दिवस को आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी योग करते हैं आप?
1: हाँ, योग और रनिंग ये तो डेली का रूटीन है।
0: जी,
1: योग को क्या है, जीवन में एक सकारात्मक सोच के लिए भी जरूरी है
0: जी,
1: और मेंटली है और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए योग बहुत आवश्यकता है मेरे जीवन के लिए।
0: जी, इसको तो पूरा परिवार मिल करके जो है थोड़ा सा समय निकाल के हमको योग करना चाहिए।
1: योग करना चाहिए और
0: जी
1: सभी के लिए जरूरी है, चाहे
0: जी
1: युवा हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो।
0: जी,
1: मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मेरे हिसाब से योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें फोन किया। आप जैसे श्रोताओं का स्नेह ही हमारे सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है, आपको कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में।

0: कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हेलो।
0: हाँ हेलो, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं उत्तम सिंह जंगेल आर्यनगर कोंका भिलाई से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जी, उत्तम सिंह जी, आपकी तबीयत कैसी है?
1: ठीक है सर।
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: आर्यनगर भिलाई से।
0: भिलाई आर्यनगर।
1: जी जी
0: जी जी, आपके तरफ मौसम कैसा है? गर्मी लग रहा है या

0: फिर बरसात होने का मौसम
1: गर्मी
0: बदल
1: तो
0: रहा है।
1: सर, लेकिन कल बारिश हुआ है,
0: जी
1: उसी कारण थोड़ा तापमान में कम हुआ है। एक
0: जी
1: दो दिन में आ जाएगा मानसून, ऐसा सुनने को आ रहा है।
0: जी जी
1: जी,
0: तो अपने परिवार के साथ में योग करते हैं आप?
1: सवेरे योग करते हैं, शाम को छत में योग करते हैं।
0: जी तो आज कौन सा गाना आपको सुनवा दें बताइए। जी
1: ये मानसून आ जाएगा, ये गाना चलाएंगे तब तक, है ना।
0: जी
1: फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर,
0: जी जी
1: गीत के बोल है, अब के बरस बरसों के बाद हो
0: जी आपके बरस बरसों
1: के बाद हो।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा नगमा है ये। ठीक है, कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद। आपको सुनवाते हैं आपका ये पसंद का गाना।
1: जी, धन्यवाद
0: जी
1: सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी सर, मैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट बरवाड़ बीजेपुर जलपाली से बोल रहा हूँ, राधाकांत भोई।
0: जलपाली।
1: हाँ सर।
0: आकाशवाणी के कार्यक्रमों को आप कब से सुन रहे हैं और कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं।
1: 3-4 साल हो गया है सुन रहा हूँ सर।
0: जी, आपका ये पहला ही कॉल है कि और कभी आपने कॉल किया था।
1: नहीं सर, ये मेरा तीसरी बार कॉल लगा है।
0: चलिए, बढ़िया, बधाई हो आप।
1: जी धन्यवाद सर।
0: जी, बताइए आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप।
1: फिल्म का नाम है सर करण अर्जुन,
0: जी,
1: और ये बंधन तो प्यार का बंधन है।
0: जी,
1: जी सर।
0: बहुत अच्छा गाना पसंद किया है आपने।
1: जी सर।
0: जी ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा नगमा। आपको
1: थैंक यू सर।
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
0: जी।

0: करने में अनेक साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा रामविलास पटेल का, तकनीकी सहयोग प्रदान किया भूपत सिंह ध्रुवे ने तथा कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का संचालन किया मैंने यानी आपके रेडियो दोस्त रघुवर्कित साव ने। इसी स्नेह और विश्वास के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे पूर्ण कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले और दूसरे भाग का प्रसारण FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:45 में आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों कार्यक्रम रजनीकांता। कार्यक्रम में आइए पहले हमको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म छैला बाबू का ये गीत। हम बच्ची गली के बोलों को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस के एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से

में स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा। एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।

0: एफएम 16.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इस चैनल पर अब आपके लिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोज

0: रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
2: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency (NTA) today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
3: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
2: In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण अभी समाप्त होता है। कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।